0: 10 मिनट में।
1: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
2: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
3: Excuse me. It's called being loyal.
2: It's called being predictable.
3: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
2: And what's so special at Neon Cactus?
3: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
2: Not bad.
3: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
2: Okay, this I didn't expect from you.
3: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
10: शाहरुख खान भी फन एजा सुनते हैं, देख लीजिए 104.9 FM फन एजा रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं आपकी होस्ट हूँ नवनीता, फन एजा रेडियो पर। यू नो फन एजा फिल्म्स हैं विच रियली ब्रिंग्स सो मैनी मूवीज हियर ऑल ओवर द US, दे डिस्ट्रीब्यूट मूवीज। और सबसे मज़ेदार बात है कॉकटेल 2 जो नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है, सुपर वेरी सॉट आफ्टर, आई एम गोइंग टू द थिएटर्स, दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीज बाई फन एजा फिल्म्स। और अभी जो चल रही है ये जवानी तो इश्क होना है, वो भी फन एजा फिल्म्स की तरफ से ही है, लाई गई, द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर द US एंड दैट इज़ फन एजा फिल्म्स, सुपर टुपर।

0: सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. जब इतना प्यार हो जाए ना तो शाहरुख खान ने इसे लवेरिया कह दिया था, वो बीमारी जिसका क्या तो इलाज है. लेकिन सच्ची की अगर बीमारी हो जाए ना तो सच बताइए, आपके साथ आपके डॉक्टर कितना वक्त बताते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट? लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर है वे एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स. और ये एक्चुअली आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू आर जस्ट इन एंड आउट ऑफ एन ऑफिस. वो आपको क्या तो समझेंगे, क्या तो महसूस करेंगे वॉट ऑल यू आर गोइंग थ्रू. सो ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. इट इज़ नॉट लाइक अ 2 मिनट 5 मिनट्स थिंग. पैशन हेल्थ, आप वहाँ पर सिर्फ पेशेंट नहीं है, वो कहते हैं आप उनकी फैमिली है. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दे आर हियर. एंड दिस इज नॉट ऑल, पैशन हेल्थ इज ऑल्सो ग्रोइंग, यू नो. They are there for you, but they are also hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. If you are passionate about patient care, send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com. आप text भी कर सकते हैं उन्हें 217-454-4639 for more information. आप visit कीजिए passionhealthphysicians.com या फिर phone उठाइए, number दबाइए, text कीजिए 214-666-6259. Passion Health Primary Care, your health is our passion. And that is what they know, they feel and they care for. 104.9 FM फनीजा रेडियो पर शुरू होता है अब वो गेम शो जिसका आपको इंतजार रहता है फ्राइडे के फ्राइडे.
1: कर हिंदी हिंदी बोल,
2: कर हिंदी हिंदी बोल, कर हिंदी हिंदी बोल.
0: ओय ओय ओय ओय, जमुरे क्या बोलेगा? बोलेगा तो हिंदी अलाउड, ओके, उर्दू अलाउड, बट नॉट अलाउड इज अंग्रेजी. पता नहीं कहाँ से चली आ रही है, घुसी जा रही है हमारे हिंदी में. अंग्रेजी नॉट अलाउड, गेट आउट. यही हम कर रहे हैं आज. फोन उठाएगा, नंबर दबाएगा 972-235-5555. इस गाने के बाद लूंगी वो कॉल्स.

सुपर ब्यूटीफुल 104.9 FM फनीजा रेडियो है ये रेडियो स्टेशन जिसको आप सुन रहे हैं. और पता है आपके प्यार ने इस रेडियो स्टेशन को कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा दिया. सो वी हैव मोर देन वन रेडियो स्टेशन 104.9 FM फनीजा. तो हमारा हिंदी रेडियो स्टेशन है ही है, बॉलीवुड खासकर, और गल हिंदी हिंदी वैसे चालू है, आप कॉल कर सकते हैं. रेडियो संगम आ तेलुगु रेडियो स्टेशन, वणक्कम एफएम तमिल. तो हमारे सारे तमिल लिसनर्स को वणक्कम, वणक्कम एफएम में ट्यून इन कीजिएगा. अपना पंजाब आर पंजाबी रेडियो स्टेशन फॉर द बल्ले बल्ले पंजाबी आर लिसनर्स. रेडियो कारवां तो है ही हमारा एक और हिंदी रेडियो स्टेशंस. तो इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आप ही के प्यार से बढ़ता चला जा रहा है हमारा परिवार भी विद सो मैनी डिफरेंट रेडियो स्टेशंस विच वी लव टू ब्रिंग टू द एंटायर कम्युनिटी. अभी और भी रेडियो स्टेशन बढ़ जाएंगे, हाउ डू यू नो, यू डोंट नो, क्योंकि जब आप प्यार देते हैं और हमें कहते हैं यार मुझे ये वाला लैंग्वेज का रेडियो स्टेशन भी चाहिए, तो हम कहते हैं जो हुकुम आका. और अभी जो लैंग्वेज है वो है गल हिंदी हिंदी बोल. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए और जुड़िए हमारे साथ गल हिंदी हिंदी बोल में. लेट अस मेक इट योर फन इवनिंग विथ गल हिंदी हिंदी बोल.

अरिजीत सिंह को क्या आप मिस करते हैं यार? जब बोल रहे थे अरिजीत ने ब्रेक ले लिया है एंड ही विल नॉट डू प्लेबैक सिंगिंग, यू नो थोड़ा सा तो मामला सेटल डाउन होता है और पीपल डू मेक सर्टन थिंग्स, दे से सर्टन थिंग्स. हाल ही में ना प्लेबैक सिंगर शान ने एक डिस्कशन की और उन्होंने कहा कि ये जो अरिजीत सिंह स्टेपिंग बैक फ्रॉम बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग, बहुत सारा अटेंशन सिचुएशन, लोगों ने एक्चुअली बहुत कुछ रीड करना शुरू कर दिया बिलो द थिंग्स दैट एक्चुअली ही हैपेंड. एंड उन्होंने बोला कि हम आर्टिस्ट हैं और कभी कभी क्या होता है, हम इतने खिंच जाते हैं कि हमें लेना पड़ता है एक स्टेप बैक, वी वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो एंड ऑफ द ईरा हो गया है. एक इतना बड़ा हुनर, इतना सबको जिन्होंने एंटरटेन किया, आई डोंट थिंक दैट ही रोट दैट इन ब्लड. ही सेड कि खून में नहीं लिखता कि आई हैम टेकिंग अ ब्रेक फॉर एवर. पीपल हैव इन द पास्ट ऑल्सो मेड स्टेटमेंट दैट इट इज दैट आई क्विट एंड देन द नेक्स्ट थिंग द बैक. आई थिंक पीपल आर रीडिंग टू मच इन टू दिस एंड दैट इज़ वॉट शान सेज, क्योंकि म्यूजिक इज मोर ओपन नाउ देन एवर बिफोर. शान कहते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन द चेंजिंग म्यूजिक इंडस्ट्री और आज की जो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस है dramatically with the rise of digital platforms and independent music, the point is that it's open to so many more and better and different formats. People don't have to go through a music company or a music composer anymore. They're making music on their own. And वक्त बदलता है, वक्त के साथ लोग बदलते हैं. बट लोग खाली एक उसको सनसनी खबर बना दिया, ओ माई गॉड अरिजीत सिंह तो ही हैज टेकन अ ब्रेक. नहीं, बहुत काम कर रहे हैं. शान कहते हैं द एक्सेसिबिलिटी ऑफ म्यूजिक क्रिएशन हैज चेंज हाउ आर्टिस्ट अप्रोच देयर करियर्स, मेकिंग द इंडस्ट्री फार मोर डाइवर्स देन इट वॉज ड्यूरिंग हिज पीक ईयर्स एज अ प्लेबैक सिंगर. तो अरिजीत सिंह क्या लेकर आने वाले हैं वो तो हम देखेंगे ही, हम जानेंगे ही. पर ये बार बार कहना वो तो छोड़ दिया है उन्होंने, ही इज़ नो मोर in the industry, I think that's like not possible. It is Arijit Singh, yaar. Aur bhi bataungi Shaan kya kehte hain, par ek Arijit ka gana ho jaye, so wo to banta hai yaro. It is, we are talking of our very, very favorite Arijit. Aur hame pata hai ki Arijit cannot go anywhere. He will never go anywhere. Chaliye, ek ye bahut different sa gana hai. जैसे कि उनकी सोच है कोलैबोरेशंस की,

Angels for Each Other, द ऑफिशियल वीडियो मार्टिन गैरिक्स एंड अरिजीत सिंह का मिक्स है ये. एंड आज कह रही थी कि ये शान कह रहे हैं बिकॉज ऑल दिस म्यूजिक द सिंगर्स एंड इतने सारे स्पेकुलेशंस हो जाते हैं. द मीडिया इज वन यू नो इंस्ट्रूमेंट दैट कैन ब्लोट अप एन एंटायर थिंग. एक इंसान को अपने से ज़्यादा मीडिया से कभी कभी पता चल जाता है कि जो उनकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा था उनके मीडिया से पता चलता है. अच्छा उनकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा, मुझे ही नहीं पता काइंस. सो रिएक्ट तो दुनिया कर ही रही है अरिजीत सिंह के लिए, बट ये म्यूज़िक बहुत सब कुछ बदल गया है. शान ये भी रिकॉल कर रहे थे कि ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन He recalled a discussion with singer Kailash Kher about how singers are frequently asked to perform impromptu at the gatherings. तो वो कहते हैं पर्सनली मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कभी किसी मैं कभी भी हो तो लोग मुझे बोलेंगे दो गाना दो लाइन गा दो. इफ माई वॉइस इज गुड आई एम नॉट स्ट्रगलिंग विद समथिंग इमोशनली आई बी हैप्पी टू सिंग अ कपल ऑफ लाइन्स. पर कोई अगर आ जाए और कहे दो लाइन गा दो यार, व्हाट्स द बिग डील. पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिंगर्स उस समय नहीं गाना चाहते हो दो लाइन. आई हैव नेवर फेल फटीक फ्रॉम सिंगिंग, शान कहते हैं एड्रेसिंग कि सिंगर्स में एक्सपीरियंस बर्न आउट ड्यू टू ओवर एक्सपोजर, हैवी वर्क लोड्स. और देर वॉज अ टाइम जब मैं बहुत सारे गाने गा रहा था और इतने गाने गा रहा था, कुछ कुछ तो इतनी छोटी फिल्मों के लिए गा रहा था कि वो कभी छोटी ही फिल्में रह गई और वो गाने कहीं पहुँचे नहीं. अरिजीत सिंह बहुत ही इंटेंस पर्सन है and he takes his music very sincerely. It could be that he felt that was too much work coming in and wanted to cut it down. And despite industry changes, you know, we love him. And kabhi bhi Arijit Singh yesterday nahi ho sakte. Kuch na kuch achha aayega hi. With that said, let us enjoy this mashup.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
3: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जा रहा हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
4: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
5: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
6: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
7: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
8: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
9: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
8: K2 ड्राइव मतलब
9: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
8: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
9: 100%
10: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400. K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: चिकन बनाना,
18: चिकन बनाना.
19: ब्रो बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
20: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
21: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

कभी कभी होता है ना कि जेलू राम कहीं से आ जाते हैं और कुछ भी कह देते हैं. कहते कल ना बहुत देर से दो लोग ना आपस में गाली गलौज कर रहे थे, दे वर जस्ट अब्यूजिंग ईच अदर, करे जा रहे. फिर बोलते मैं वहाँ पहुँचा, उन्हें समझाया, तब जाके फाइनली मारपीट शुरू हुई है. जेलू राम रियली टू मच. ऐसा ही होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें वैन यू नो मारपीट में बदला दिया है झगड़े को. दैट कैन ओनली बी आवर वेरी ओन क्या ही तो बोलूँ. 104.9 FM फनीजर रेडियो सुन रहे हैं. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए दोस्तों. विशाल मिश्रा, यू लव इट.

0: विशाल मिश्रा द न्यू गाय, वेरी वेरी इमोशनल, जस्ट दिल पे दिल की बात दिल तक पहुंचे तो लगती है ठाएं, और वैसे ही इनकी आवाज़ है टोटल ठाएं ठाएं. ओके दोस्तों, माय टाइम एक्विटी जो CPA सुधी पाई लीड करते हैं, दे हेल्प इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. आप प्लान कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ के बारे में या रिटायरमेंट के बारे में, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट, माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. आप विजिट कर सकते हैं mytimeequity.com या फिर फोन उठाइए, नंबर दबाइए 4697021272. आज ही. चलिए लेती हूँ मैं एक अपने कॉलर को फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल. गुड इवनिंग फनी चौधरी, जो आपका स्वागत है गर्ल हिंदी हिंदी बोल में. हाउ आर यू?
1: हेलो. यस, इंग्लिश में बोलना है या हिंदी चलेगा अभी?
0: हिंदी. अच्छा, इंग्लिश में बोलना है कि हिंदी चलेगा अभी? हिंदी चलेगा
1: मतलब
0: अभी.
1: आपने हेलो बोला इसलिए मतलब आपने हेलो बोला इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली स्टार्ट कर दिए या स्टार्ट करना है.
0: स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट किए नहीं है, बट हम स्टार्ट कर लेंगे. और क्या है ना,
1: ठीक है, वो भी चलेगा,
0: है ना, वो भी चलेगा. ऑलराइट, सो हम चलाते हैं इसको और आपसे हिंदी में बात करते हैं, लेकिन वक्त शुरू होने के बाद. डन?
1: ओके.
0: सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एक मिनट सर, आपका नाम तो पहले बता दीजिए.
1: विशाल
0: जी, चलिए आपका वक्त शुरू होता है अब. हाय विशाल, सो आपने पहले गले हिंदी खेला है मेरे साथ?
1: एक बार खेल चुका हूँ.
0: एक बार खेल चुका तो आप उसमें इंग्लिश बोल दिए थे?
1: हाँ, मैंने मतलब गलती से एक शब्द बोल दिया था.
0: एंड भी बोल दिया आपने.
1: मतलब वही शब्द बोला था मैंने.
0: सो एंड तो अंग्रेजी है, वो तो हिंदी है नहीं. चाहे दो शब्दों को, हिंदी शब्दों को जोड़ ही हो, वो एक अंग्रेजी कहाँ से घुस गई है.
1: मतलब पिछले बार मैंने यही शब्द बोला था और इसलिए हार गए.
0: अगेन सो सॉरी, अभी तक आपने नहीं सीखा है. नेक्स्ट टाइम थोड़ा कक्षे में ज्यादा मेहनत कीजिए.
1: अभी मतलब बोल तो लेता हूँ पर अभी क्या करें, यहाँ की इतनी इंग्लिश बोलने की आदत पड़ गई है कि अब छुट्टी नहीं है.
0: यहाँ काती नहीं मेरी जाती नहीं. थैंक यू सो मच, बाय बाय. आई एम सो सॉरी, ऐसा ही होता है, छोटे छोटे शब्द ना कहाँ से आ जाते हैं पता ही नहीं चलता. 104.9 FM फनी जॉय रेडियो पर आप सुन रहे हैं आर्च नवनीता को गर्ल हिंदी हिंदी बोल पर. ऐसे कुछ बजाया जाए तो आज हमारे साथ है हमारे बर्थडे बॉय सोमिल, और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सोमिल. हमारे मैं जो शो कर रही हूँ अभी 8 बजे तक, 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रहेगा मेरा साथ, लेकिन सोमिल का आज जन्मदिन है. ये वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. चलिए उनके लिए गाना बजाया जाए, ए तेरा हैप्पी बर्थडे, ठीक है, क्योंकि सोमिल का बर्थडे है. एंड वाई नॉट, इफ यू आर लिसनिंग टू फनीजा रेडियो, हम तुम विद सोमिल. ऑलराइट, दिस इज अ सॉन्ग दैट इज रिक्वेस्टेड बाय सोमिल, बट वो हम बजाएंगे हम तुम विद सोमिल.

0: ओ, ये है सोमिल का हैप्पी बर्थडे। हम तुम भी सोमिल वो लेकर आते हैं अपना शो, सो देयर यू गो, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। एंड विशाल साहब, आप तो आउट हो ही गए, लेकिन आउट नहीं होने का कहीं पर। आउट जब ऐसा फीलिंग हो कि जोरों से आउट हुआ है, यू आर इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट अ केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। होता है ना कि हम उस समय इतने कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने शॉक्ड हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम करें क्या। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कॉम्पेंसेटेड। तो उनका ये दावा है, यू डोंट पे अंटिल यू विन। फॉर अ फ्री कंसल्टेशन फोन उठाइए नंबर दबाइए 469-300-5046, या विजिट कीजिए अटर्नी ओमर डॉट कॉम। यहाँ पर कॉल्स तो आ ही रहे हैं क्योंकि गल हिंदी हिंदी में जुड़ना है। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर। आई एम सॉरी, गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर। आई थिंक गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, कैन यू हियर मी?
1: हेलो,
0: हाय, हाउ आर यू?
1: गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम ग्रेट। बताइए नाम क्या है आपका?
1: मनीषा,
0: मनीषा। हाय मनीषा, आप तो पहले खेली भी गर्ल
1: हाय,
0: हिंदी हिंदी बोल।
1: हाय,
0: आप गर्ल हिंदी भी हिंदी खेलना चाहती हैं?
1: या हाँ,
0: हाँ, ऑल
1: खेलना
0: राइट।
1: चाहती
0: आपके हस्बैंड है जो बोल रहे हैं, या मत बोलो, हाँ बोलो। आई
1: एक्चुअली
0: कुड हियर हिम। वर्क शुरू किया
1: मेरे
0: था?
1: हस्बैंड आपके साथ एक बार बोल चुके हैं इसमें हिंदी हिंदी में,
0: हाँ,
1: तो
0: ऑलरेडी
1: इसलिए
0: बोल चुके हैं ना, वो हार चुके हैं तो
1: हाँ
0: आपको अब आगे कर दिया। बोलते अच्छा, मेरे ऊपर ही कोई ना हंसे, आप भी आपके ऊपर भी कोई हंसे, है ना।
1: हाँ
0: चलिए, लेट्स स्टार्ट योर टाइम
1: नारी
0: मनीषा। सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग सर?
1: शक्ति जितनी चाहिए
0: नारी शक्ति जीतनी चाहिए। चलिए, आपका साथ होगा तो नारी शक्ति जीतेगी। हाय नारी शक्ति, मनीषा, हाउ आर यू
1: हाय,
0: डूइंग?
1: गुड,
0: व्हाट इज
1: आई एम
0: गुड? आपका वक्त शुरू हो गया है। गुड इज इंग्लिश।
1: गुड। ओ ओके ओके, मैडम
0: ओके ओके, फिर भी ओके ओके।
1: अभी शुरुआत करना है क्या?
0: नहीं, हो चुका है शुरुआत आपका। चलिए मैं फिर से शुरू
1: जी
0: करती हूँ, आप मिस्टेक मत कीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके,
1: हाँ ठीक है,
0: हाँ ठीक है, वंडरफुल। सो नो मोर मिस्टेक्स मनीषा। ये आप ये

0: शुरुआत आपका. चलिए मैं फिर से शुरू करती हूँ, आप मिस्टेक मत कीजिएगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके. हाँ ठीक है, वंडरफुल. सो नो मोर मिस्टेक्स मनीषा. ये आप ये जो बोल रही थी, आपके हस्बैंड एक्चुअली गेम खेल चुके हैं, वो कब हुआ था?
1: वो अभी 2-3 महीने हो गए.
0: 2-3 महीने हो गए. ऑल राइट. 2-3 तो अंग्रेजी है ही नहीं, वो तो हिंदी है ना. 2-3. आई लव इट. माई गॉड, हम हमारी हिंदी भाषा में ये ऐसे कूट कूट के अंग्रेजी भर गया है ना, हम क्या करें. थैंक यू सो मच. यू गैस हैव फन. अब ठीक है, आप लोग दोनों का बराबर हो गया. हस्बैंड भी हार गए, आप भी हार गई, तो आप जाके सेलिब्रेट कर लीजिए.
1: कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे.
0: यस, आप दोनों साथ आइएगा. शुक्रिया.
1: हाँ हाँ ठीक है.
0: बाय बाय. सुपर, मजा आ जाता है जब गर्ल हिंदी हिंदी में मैं ऐसे आपको ट्विस्ट कर देती हूँ. थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर. ये गाना आपके लिए.

0: पास नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: एंड यू नो ये पार्टी शुरू होने वाली है विशाल और शेखर के साथ, जब लाइव आएंगे वो हमारे डैलस में। और डैलस बॉलीवुड फैंस, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव। यही तो होने वाला है जब ये डुओ इधर आएंगे, विशाल और शेखर, द डुओ बिहाइंड सम ऑफ द बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, आर ब्रिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस। और ये होने वाला है संडे जुलाई 12th को एट द कर्टिस कल्वल सेंटर गार्लैंड। टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम। July 12th is the day. So rock it, get your tickets. Do not wait for anything. 104.9 FM, Funny Jar Radio. Two floors.

0: सुपर दोस्तों, साल्स चिकन इज ब्रिंगिंग द अल्टीमेट इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज. ये डील है यहाँ पर, यू हैव 10 मिनट्स टू फिनिश 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स. ओ माय गॉड, स्लर्प स्लर्प विद ओनली 1 कप ऑफ मिल्क. एक कप दूध के साथ आपको ये 3 जंबो चिकन खाना है एंड एब्सोल्युटली नो डिपिंग, मतलब मिर्ची का कमाल. And prizes हैं totally worth the prizes. Finish 1 jumbo tender, get a free sandwich every day for 7 days. Finish 2 jumbo tenders, enjoy free sandwiches for 15 days. And if you conquer mirchi khate khate all 3 inferno tenders, you win the grand prize, a free sandwich every day for 30 days. संडे जून 14th 4 PM साल्स चिकन रिचर्डसन में आपको जाना है, पार्टिसिपेट करना है, एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री. 3 चिकन जंबो चिकन तो मिलेंगे ही आपको, उसे ख़त्म कर दिया तो 30 दिन के लिए आपको मिलेंगे. जस्ट बी रेडी टू साइन अ वेवर बिफोर यू टेक ऑन द हीट. स्लर्प ऐसा ही है. चलिए एक अपने कॉलर को लेती हूँ मैं ऑन एयर फॉर अ गिव अवे एज वेल. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, गर्ल हिंदी हिंदी पर आपका स्वागत है. हाउ आर यू?
1: गुड गुड इवनिंग, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
0: आई एम ग्रेट. नाम बताइए.
1: मेरा नाम है संजय.
0: संजय, ओके. आपको दिखता है आंख में पट्टी डाल के पूरा महाभारत?
1: हाँ, मुझे सब कुछ दिखता है कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ. आप मुझे बताओ तो आपके स्टूडियो में बता सकता हूँ कि आपके राइट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्या है. लेकिन आप पहले बताना, गेम जब चालू करोगे तभी. अभी मुझे गेम नहीं चालू हुआ है.
0: हाँ, नहीं हुआ है. तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ संजय. तो आप मुझे बताएंगे अब आपका वक्त शुरू हो गया है कि मेरे राइट साइड में क्या है और मेरे लेफ्ट साइड में क्या है.
1: आपकी दाई ओर पानी है और आपकी बाई ओर कुछ शायद कलम है और कागज है.
0: कलम, कागज, पानी, कुछ भी नहीं है. मेरे दाई तरफ, बाई तरफ चश्मा है और राइट साइड मेरे पास एक सेल्फी स्टिक है और फोन भी है. हाउ अबाउट दैट? मतलब संजय, गलत संजय आप. हाउ आर यू डूइंग?
1: खोल दो प्लीज.
0: तो कहाँ जा रहे हैं आप संजय?
1: मैं अंधेरे में कहीं गुम हूँ पट्टी बांधे हुए. पहले मैं उसको निकाल देता हूँ ताकि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे. हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ जलपान के लिए बाहर हूँ. अगर आप कहें तो आपके लिए भी लेके आऊँ.
0: ओके, व्हाट आर यू गेटिंग? आप खा क्या रहे हैं? वैसे मैं फ्लेवर लाउंज से आपको एक डाइनिंग देने वाली हूँ.
1: अच्छा,
0: नाइस,
1: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया. मैं खा रहा हूँ समोसा और उसके साथ एक चाय.
0: वाह, समोसा ईरानी चाय. वाओ, सुपर. सो ये अकेले अकेले है कि कोई फैमिली साथ है?
1: बीबी जी हैं साथ, वो भी खाएगी.
0: बीबी जी भी खाएंगे, सुपर. तो बीबी जी के लिए भी मैं दे रही हूँ आपको चांस टू विन दाल मखनी एंड ढाबा स्टाइल चिकन करी फ्लेवर लाउंज में.
1: क्या बात है,
0: सुपर ना.
1: क्या करना होगा उसके लिए?
0: बस आप मेरे से बात करें वही काफी है. देखिए यही तो होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें. सुपर, कंग्रेचुलेशन, यू आर माई लास्ट कॉलर. और मेरा वक्त खत्म हो गया, मुझे जाना है. बट कंग्रेचुलेशन, यू हैव वन एंड यू हैव वन द फ्लेवर लाउंज का डाइन इन ओनली. ये ऑफर दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन आप खा सकते हैं. मैं आपके इन्फॉर्मेशन लूंगी. लेकिन अपने लोगों को, अपने लिसनर्स को बाय बाय कर दूँ आप ही के साथ. संजय जी जो चाय पी रहे हैं और ईरानी चाय और समोसे खा रहे हैं, मुझे मुंह में पानी आ रहा है. मैं निकल के यही करने वाली हूँ, खाने पीने वाली हूँ. बट गुड नाइट, स्लीप टाइट, गेट अप हैप्पी, फ्रेश एंड ब्राइट, विशिंग यू अ फ्लावरफुल मॉर्निंग, अ कलरफुल नून, अ जॉयफुल इवनिंग एंड अ पीसफुल नाइट. माई अमेजिंग लिसनर्स, गेट अप विद अ कप ऑफ पॉजिटिविटी. इनकी ईरानी चाय नहीं, वो चाय जो आपको बस पॉजिटिविटी ही दे और पॉजिटिव लोग ही आपको अट्रैक्ट करें आप और जिंदगी में हर कुछ पॉजिटिव. राइट, है ना? ये अच्छी बात है ना?
1: यप. बहुत बढ़िया,
0: बहुत बढ़िया. सो आज आई एम एंडिंग विद संजय, जिनको सब कुछ दिखता है और मेरे लिसनर ऑन एयर हैं. एंड आई जस्ट लव इट कि मैं एंड कर रही हूँ विद हिम. एंड यू आर माय वीकेंड वाइफ के लास्ट कॉलर, 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. चलिए, बाय बाय.
1: थैंक यू, यस आई एग्री.

जी हाँ, नी मैं वारी जावा। वेलकम वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमल। जी हाँ, स्टेप्ड इन इन प्लेस ऑफ योर फेवरेट होस्ट आरजे स्वाति, और रहूंगा आपके साथ में आज रात शाम 10 बजे तक। करूंगा आपका मनोरंजन राइट हियर ऑन 104.9 FM। यस जी हाँ, क्या बढ़िया शो किया नवनीता ने, मजा आ गया। गर्ल हिंदी हिंदी, इनफैक्ट आई केम इन लिटल अर्ली एंड वी हैड अ लिटल बिट ऑफ इंटरप्शन ऑफ द एयरवेव्स, एंड मैंने उनको बताया कि आई जस्ट केम इन टू वॉच द शो लाइव, एंड शी वॉज लाइक ऑलवेज फन टू हैव नवनीताज शो, एंड व्हाट एन अमेजिंग शो शी डज। चलिए लेके चलता हूँ, जुम्मे की रात है यार, ये गाना तो बनता ही आज की शाम।

यहाँ जुम्मे की रात है, बल जुम्मे की बात हमने की नहीं थी, बट कोई नहीं, चलो आपको आपको जरूरी जानकारी देते चलते हमें आपको हेल टू नेल के बारे में. इनफैक्ट द हीट इज सो ऑन अस एंड इट्स गोना गेट वर्स, एंड अलोंग विद हीट समटाइम्स वी गेट द रेन, एंड अलोंग विद द रेन समटाइम्स वी गेट द अनएक्सपेक्टेड हेल. तो मैं आपको बताता हूँ हेल टू नेल के बारे में. इनफैक्ट you can trust the experts, volunteer well, DFW homeowners and business owners. Is your roof ready for the next storm season jo hum pe aa hi chuka hai? Well, trust the experts at Hail to Nail Contracting for professional roof replacement and repairs. Agar shingles change karna ho, TPO aur metal roofing ke bare mein aapko jankari pani ho, they handle both commercial and residential projects with quality and care. Ji haan, इतना ही नहीं, इनफैक्ट दे ऑफर जनरल रीमॉडलिंग, पेंटिंग, रिपेयर्स, कंक्रीट वर्क टू कीप योर प्रॉपर्टी लुकिंग एट इट्स बेस्ट, कर्ब अपील एंड द होल ओवरऑल लुक. फ्री इंस्पेक्शन एंड क्लेम असिस्टेंस मिलेगा आपको हेल टू नेल की तरफ से. चेक आउट देयर 5-star रेटिंग्स ऑन गूगल. फॉर डिपेंडेबल सर्विस डू कॉल निसार अहमद. जी हाँ, मैं नंबर देता हूँ आपको निसार का, 6825619795. और आप ईमेल कर सकते हो hail2ng@gmail.com. ईमेल अगर नहीं नोट कर पाए कोई नहीं, 6825619795 इज द नंबर टू हेल टू नेल.

What a beautiful song this is, taken from, जी हाँ है जवानी तो इश्क होना ही है, क्यों नहीं होना है, जरूर होना है. एंड दिस मूवी इज ब्रॉट टू यू बाय फनीशिया फिल्म्स. ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं देखी हो तो वेल इट इज अ लाफ्टर राइट, गो एंड चेक दिस आउट. लाइक टिपिकल डेविड धवन वरुण धवन मूवी, एब्सोल्युटली एंजॉयड द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी. एंड ये गाना जो आपने सुना चुनरी चुनरी, विच वॉज इनिशियली फीचर्ड ऑन well Sushmita Sen and Salman Khan, right? And that song has gone on to gather over 700 million views, and that's why they remade and brought this चुनरी चुनरी. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की, और उससे पहले बताता हूँ आपको ओमर ख्वाजा के बारे में. अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी क्योंकि आपकी नज़र रास्ते से हटी, तो कोई फिक्र नहीं, बस आप एक नाम याद रखिए, ओमर ख्वाजा का. अगर आप कार एक्सीडेंट या ट्रक एक्सीडेंट या फिर कोई स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हो गया हो आपके साथ वर्क प्लेस या फिर रिटेल सेंटर में, यहाँ वहाँ कहीं पर भी, डू कॉल अटर्नी ओमर ख्वाजा, हु विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. ही विल रिप्रेजेंट यू द राइट वे एंड मेक श्योर दैट योर benefits are preserved. Well, dealing with insurance companies can be very stressful and you need an attorney to make sure that you're compensated and represented quite well. Attorneys ka ye hota hai, insurance companies have the most fiercest attorneys. So when you're dealing with insurance company attorney, you make sure you have the right attorney on your side, and with attorney Omar Khwaja, you definitely have the right attorney who is going to represent you and get you the compensation that you rightfully deserve. You don't pay until you win. And agar free consultation karna ho to number note kijiye inki office ka, 469-300-5046, 409-300-5046 है इनकी ऑफिस का नंबर. और अगर आपको वेबसाइट पे जाना हो तो वेबसाइट भी बता देता हूँ मैं आपको, इनकी वेबसाइट है attorneyomar.com. जी हाँ, attorneyomar.com. well in the meantime, नज़र आप रोड पर रखिए, ध्यान आप ड्राइविंग पर रखिए, और मनोरंजन आप मेरे पे छोड़ दीजिए.

0: What's your problem?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, don't bother me.
0: Really?

जी हाँ, नजर करें नीचे, नीचे जाता कहाँ है सोनिया वाला। आप ड्राइविंग कर रहे हो, नजर नीचे बिल्कुल मत रखिए, नजर आप अपने ड्राइविंग पे ही फोकस कीजिए। और खुड़ी, माय गुडनेस, चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और नवनीता के शो में किसी ने गया था यार, वुमन पावर, राइट? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं यार, बनता है ये सॉन्ग तो।

0: चलिए नारी नारी करके चलता हूँ मैं, आपको लेके चलता हूँ ब्रेक की ओर, और ब्रेक के उस पार मिलूंगा मैं आपको राइट हियर ऑन 104.9।
1: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया।
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
5: Visit www.senadainc.com today.
6: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
9: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो।
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
16: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
17: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
18: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
20: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में? सब संभालेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
16: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
0: वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमल, यू ट्यून टू हम तुम विद आरजे सोमल। आज फ्राइडे शाम, फ्राइडे की रात आपके साथ रहूंगा मैं, 10 बजे तक करूंगा आपका मनोरंजन। शुरू किया था हमने 8 बजे और शो चलेगा 10 बजे तक, और बजाएंगे कुछ अच्छे अच्छे गाने और सुनाता हूँ आपको अच्छी अच्छी धुन, और लेके चलता हूँ आपको, मिलाता हूँ एक देसी कलाकार के दिल से। वेल वर्ल्ड म्यूजिक डे तो आ रहा है, उसके बारे में बताता हूँ इस गाने के बाद। इन द मीन टाइम चलिए, आजा बिल भर दूँ मैं तेरे बार का, चलो मिला दूँ आपसे मैं देसी कलाकार का।

यार होता होता होता कई बार है. टेकन फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दिस इज. एंड चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. और ऐसे ही अच्छी अच्छी धुनें और आपकी रिक्वेस्टों का सिलसिला जारी रखते हुए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. उससे पहले बताता हूँ आपको, अगर इफ़ यू हैव अफेयर विथ फूड, फॉर सम पीपल फूड इज़ फ्यूल, फॉर सम पीपल फूड इज़ एन अफेयर दैट दे इंडल्ज इन. वेल फन पिज्जा किचन के बारे में बताता हूँ आपको. इफ यू क्रेविंग समथिंग चीजी एंड want a desi twist to that cheesy flavor, well Fun Pizza Kitchen is where the flavor meets fire. जी हाँ, अगर आप वेजी लवर हो तो आपको ट्राई करना चाहिए अचारी पनीर पिज्ज़ा, विच इज़ पैक्ड विद द टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. अगर आप मीट लवर हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए तंदूरी चिकन पिज्ज़ा, विच इज़ प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. सो विद यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देर इज़ अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट Fun Pizza Kitchen. जी हाँ, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट देयर वेबसाइट Fun Pizza Kitchen. अगर डिटेल्स आपके पास काफ़ी हो गए, यू जस्ट हैव टू गो टू Fun Pizza Kitchen, वन ऑफ द टू लोकेशन इन फ्रिस्को एंड इन कॉलोनी. वेल देयर इज ऑल्सो अ चांस फॉर यू टू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड बाई आंसरिंग अ सिंपल क्वेश्चन करेक्ट. मैं आपको बताता हूँ हाउ विल यू गेट अ चांस टू विन दैट सिलेक्शन, दैट गिफ्ट कार्ड. इन द मीन टाइम चलिए लेके चलता हूँ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट फ्रॉम द यस्टरडेज. म्यूजिक, गुड म्यूजिक ट्रांसेंड्स ऑल लैंग्वेजेस टाइम बाउंड्रीज एज वेल. जो पुराना है वो नया हो जाता है, नया है और पुराना हो जाता है. वेल दैट्स द सर्कल ऑफ लाइफ एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न्ड. एंड जो पुराना है उसको थोड़ा नया सा तड़का मार के लेके आते हैं. तो माई गुडनेस,

हाँ, कोई रोको ना। जैसे मैंने बताया आपको, पुराने दाल पे नया तड़का बना के। माय गुडनेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज, टेकिंग इट अनदर वन ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। चलिए देखता हूँ अगर आपको इस गाने की कोई जानकारी हो तो। 9723555555 है स्टूडियो का नंबर। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे सौमिल और रहूंगा आपके साथ 10 बजे तक। अगर आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो तो जरूर कॉल कीजिए 9723555555।

अगर आपको याद होगा अली बाबा और 40 चोर से लिया था ये गाना. वेल दिस इज ऑफकोर्स अ रीमिक्स वर्जन एंड जो पुराना है वो नया हो गया और नया होगा वो एक दिन पुराना हो जाएगा. बस उससे पहले लेके चलता हूँ मैं आपको अगले गाने की और बताता हूँ मैं आपको टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में. फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैज प्राउडली केयर फॉर आवर कम्युनिटी थ्रू आउट द मेट्रोप्लेक्स एंड बियॉन्ड. वेल द नाउ ग्रोइंग अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन जस्ट टू सर्व यू बेटर. इंट्रोड्यूसिंग लोनॉक्सी मेडिकल. जी हाँ, founded by Dr. Mandeep Acharya, Lunoxy Medical brings primary care, urgent care and in-house lab testing, X-ray, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan Med Spa services are all under one roof, open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. जी हाँ, अर्जेंट कह रहे तो यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड एज लॉन्ग एज यू आर बिटवीन द आवर्स ऑफ 8 AM टू 8 PM. यू द डॉक्टर विल डेफिनेटली सी यू द सेम डे. जी हाँ, टू कीप दैट इन माइंड. लोनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. मैं बता रहा था आपको कि यार गानों का सिलसिला तो यही होता रहेगा, नया है जो पुराना हो जाएगा, पुराना हो उसको तड़का मार के फिर नया हो जाएगा. वेल आई एम टेकिंग यू टू अ सॉन्ग दैट जस्ट ड्रॉप्ड एंड This song is featured on Noora Fatehi among others and this song is an anthem song for FIFA. Ji haan, dusra match jo aaj tha, FIFA match. Well, Noora Fatehi is slated to open for FIFA in Canada. Chaliye leke chalta hoon the anthem song by Noora Fatehi.

वॉज नोरा फतेही फीफा सॉन्ग, फीफा एंथम सॉन्ग, चार दिन पहले ही रिलीज किया है ये सॉन्ग एंड द सॉन्ग हैज गॉन आउट टू गैदर मोर देन 40 मिलियन व्यूज एंड काउंटिंग. कैन यू बिलीव दैट? एंड नोरा फतेही इज पुटिंग इंडिया ऑन द फीफा सॉकर मैप. वेल, वी आर नॉट इन द गेम बट वी आर डेफिनेटली इन द सेरेमनीज ऑफ द गेम फॉर श्योर. आज तक के लिए वेल इंडिया में होता था मोहन बगान टीम, राइट? रिमेंबर दैट. इनफैक्ट नोरा फतेही इज अ लकी चार्म फॉर गेस विच एक्टर जॉन एब्राहम. जी हाँ, अ लॉट ऑफ जॉन एब्राहम मूवीज लाइक सत्यमेव जयते, लॉट ऑफ जॉन एब्राहम मूवीज फीचर नोरा फतेही बिकॉज ही बिलीव्स दैट शी इज द लकी चार्म फॉर हिम. एंड जॉन एब्राहम हैज़ गिवन अस सो मेनी ब्यूटिफुल एक्टर्स लाइक यामी गौतम एंड आयुष्मान खुराना विद विकी डोनर. दैट वॉज जॉन एब्राहम प्रोडक्शंस. एंड जॉन एब्राहम इज ऑल्सो अ वेरी एविड सॉकर फैन. He has a lot of Bollywood actors are investing in IPL franchises and stuff. John Abraham has made a deliberate effort and gone on to invest in soccer franchises, especially in East India side. Huge. Jitna bhi ab John Abraham ke baare jano na, you will see the resemblances and the resonances between John Abraham and Keanu Reeves. He's a very down-to-earth guy, very humble guy. A lot of people are very approachable as well. At the same time, very intense when it comes to his profession and his discipline. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. उससे पहले बताते चलता हूँ, कभी आपको अगर एनी टाइम यू वरीड अबाउट एक्सपेंसेस एंड स्टफ एंड यू सेइंग यार पैसा जा रहा है आ नहीं रहा है, इट्स नॉट काउंटिंग टुवर्ड्स एनीथिंग एल्स, लेट मी टॉक टू यू अबाउट कनेक्टिंग अमेरिका. जी हाँ, विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. सो खर्चा तो खर्चा और आपका इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाएगा विद इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. इट डजंट स्टॉप देयर. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait. Call James today at 321-888-321-888-7345. 321-888-7345. Or you can visit their website, which is Connecting America Financials, plural, connectingamericafinancials.com, and start turning your daily expenses into income. Connecting America is where smart business owners turn costs into cash. जी हाँ, चलिए लेके चलते हैं हमको इस गाने की ओर. और इस ये गाना लेके चलेगा हमको ब्रेक की ओर. और ब्रेक के उस पार मिलूंगा मैं कुछ अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट जो आपकी आई है उनको पूरी करता हूँ इस गाने के बाद.

Welcome, ladies and gentlemen. जी हाँ, hanging with girls on the weekend. Weekend तो हम पे है और बहुत ही अच्छा weekend होने वाला है. In fact, on the other side of the weekend, we'll see some fresh showers and rains on the other side. But in the meantime, this is going to be a hot weekend. Well, it's going to be pleasant tomorrow morning. चलिए लेके चलता हूँ आपको इस segment की ओर और बढ़ते हुए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. सुनाता हूँ ये धुन Blast from the Past. This is your host RJ Saumil. I'm stepping in for RJ Swati and मेरा शो जनरली होता है सैटरडे नाइट चीले ज़रा जो होता है 7-6 से 9 और करूँगा आपका मनोरंजन टुमारो नाइट. इन द मीन टाइम एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एवरग्रीन. जो एवरग्रीन कहते हैं ना, एवरग्रीन के बारे में बताता हूँ मैं आपको और एवरग्रीन ट्रैक के बारे में सुनाता हूँ पहले आपको और एवरग्रीन ज्वेलरी के बारे में बताता हूँ इस सॉन्ग के उस पार.

जी हाँ, दैट वाज द एवरग्रीन सॉन्ग दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट. सम सॉन्ग्स स्टे विद अस एंड डेफिनेटली डू सेंड योर रिक्वेस्ट इन वर्ल्ड म्यूजिक डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ. एंड अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा गाना हो तो गो टू funnyshare.net एंड डू सेलिब्रेट योर फेवरेट सॉन्ग, शेयर विद अस. एंड अगर आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो तो यहाँ पर शेयर कीजिए. 9723555555 है स्टूडियो का नंबर. रहूँगा आपके साथ मैं 10 बजे तक, करूँगा आपका मनोरंजन. जैसा मैंने बताया आपको एवरग्रीन सॉन्ग के बारे में तो आपको बता दिया, अभी एवरग्रीन ज्वेलरी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको. इनफैक्ट एट श्री कृष्ण ज्वेलर्स, ज्वेलरी इज मोर देन जस्ट एन एक्सेसरी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी. जी हाँ, अगर क्लासिक गोल्ड डिजाइन हो या फिर स्पार्कलिंग डायमंड्स, वेदर यू वॉन्ट टू बी दैट सटल सॉफ्ट मेक ए स्टेटमेंट और यू वॉन्ट बी ब्राइट स्पार्क ब्लिंगी, वेल फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टैंडिंग पोल्की कलेक्शन, एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स दैट यू शेयर विद योर स्पेशल friends and family. Now welcoming you at their new location. Ji haan, inka location hai 13145 Suite 200 Main Street, Frisco 75035. Sri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished memories since 1967. Ji haan, 1967 se ye jewelry ke business mein hai Sri Krishna Jewelers at their new location 13145 Suite 200 Main Street. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर और सुनाता हूँ मैं आपको ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन फनीशिया. दिस इज़ योर होस्ट आरजे सोमिल. अगर आपको कुछ सुनना हो, जैसे मैंने बताया आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो तो कॉल कीजिए, क्योंकि क्यों आजकल नींद कम और ख्वाब ज़्यादा है. लेट मी लाइन अप दैट सॉन्ग, हैंग ऑन वन सेकेंड. Yes, this is the song that I wanted to bring for you guys.

हाँ, क्यों आजकल नींद कम और ख्वाब ज्यादा है क्या? मुझे प्यार है। एब्सोल्युटली फन सॉन्ग टू ग्रूव टू डांस टू। वेल, ग्रूव तो नहीं बट डांस कर सकते हैं इस सॉन्ग पे, क्योंकि बीट वॉज लिटिल फास्टर देन ग्रूविंग। ग्रूव सेगमेंट करेंगे किसी दिन, किसी शाम को हम एक सेगमेंट करेंगे जिसमें आपको बहुत मौका मिलेंगे ग्रूव करने के। उससे पहले लेके चलता हूँ आपको, चलिए अगले गाने के लेके चलता हूँ। जैसे मैं बता रहा था आपको कि यार जो नया है वो पुराना हो जाता है, जो पुराना है वो नया बन के आता है। वेल, करीना कप नॉट करीना कटरीना कैफ डेड टिप टिप बरसा पानी। अगर आप मेरी अगर मानो तो टिप टिप बरसा पानी इज ओन्ड बाय रवीना टंडन, देन नोबडी कैन रिप्लेस दैट। ऑफकोर्स कटरीना कैफ डिड अ फैंटेस्टिक जॉब विथ टिप टिप बरसा पानी, बट आई एम बायस्ड कह लो, या फिर आई एम नॉट टेकिंग इट दैट कटरीना ओन दैट सॉन्ग, रवीना टंडन एब्सोल्यूटली ओन्स दैट सॉन्ग। वेल, इट हैज़ कम फुल सर्कल। कटरीना का जो सॉन्ग एक था दैट हैज़ रीमिक्स एंड कम आउट, एंड दिशा पटनी इज नाउ इन दैट सॉन्ग। कौन सा गाना? वेल, आप सुनिए ये गाना, और व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज अगेन। दिशा पटनी, यू विल नॉट ओन दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग इज ओन्ड बाय कटरीना कैफ।

0: किसने दियो ठोको रणथावा उसको ठोको ही ठोको।
1: I will not give you that मौको। अभी तो कुछ दिनों में मेहंदी संगीत एंड रोको।

0: यार ये बानी और प्रीत का आमना सामना ना हो जाए यार।
1: अरे लंदन है लंदन यार, हाँ। दादर स्टेशन थोड़ी है।
2: कभी रोना है, कभी हंसना है, कभी रोना है।
3: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
1: टट्टी
4: गाने में डायलॉग्स बहुत है यार। अगर आपने गाना देखा, मूवी देखी हो तो आपको पता ही होगा। यू गेट द कॉन्टेक्स्ट। अगर मूवी नहीं देखी तो यू द सॉन्ग विल लीव यू वांटिंग फॉर मोर। सो लेट मी प्ले अनदर सॉन्ग इन द मीन टाइम। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की। और उससे पहले सुनाता हूँ मैं आपको पीएमजे ज्वेल्स के बाद में वेल डैलस द वेट इज फाइनली ओवर। पीएमजे ज्वेल्स इज नाउ कमिंग टू फ्रिस्को। इनके साथ आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। Explore the stunning gold and diamond and bridal collections for every celebration जो होता है इनके पास। एवरी सेलिब्रेशन जो होता है आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए ये कलेक्शंस लेके आते हैं आपके साथ। आपके पास 60 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जॉइन द ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन जो होने वाला है जून 20th को। एन्जॉय एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज एंड चांस टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसीस। इज प्राउडली एसोसिएटेड विद द वन एंड ओनली महेश बाबू एंड सितारा कटमनेनी। पी एम जे is a name trusted by generations. Do visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story.

रीमिक्स दिस इज़ ओरिजिनल सॉन्ग में देखा था आपने मास्टर राजू को इसमें. रिमेंबर बैक इन द डे ओल्डन मूवीज़ 80s 90s के मूवीज़ जो होते थे उसमें कभी कभी लड़के को लड़की बना के दे यूज़ टू हैव राजू बी अ गर्ल एंड अ बॉय. जैसा आपने देखा होगा 2005 में उनका उनकी अदाकारी थी एंड ऑफकोर्स दिस वॉज अनदर मूवी वेयर मास्टर राजू वॉज पिक्चराइज इन दिस सॉन्ग. दिस रीमिक्स वर्जन आई एब्सोल्युटली लव. चलिए लेके चलता हमको अगले गाने की और जैसा मैंने बताया आपको आपको अगले सेगमेंट में मिलेंगे दो चांसेस जीतने के, वन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एंड वन फ्रॉम फन पिज्जा किचन. सो द हिंट्स फॉर दैट giveaways are in this segment. This is your host RJ Somil. You tune into Hum Tum with RJ Somil.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
6: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
5: Kaise?
6: Page 3 eatery?
5: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
7: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai, profits hai but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
9: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
10: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

मेरे दिल में छे हम तुम, व्हाट डू वी डू विदाउट हम तुम, तेरे दिल में छे हम तुम, कैन डू विद विदाउट हम तुम। दिस इज हम तुम विद आरजे सोमिल और पहुंच गए हम आखिरी सेगमेंट ऑफ दिस शो ऑन दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे नाइट। जुम्मे की रात है और बहुत सारी अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट आई थी आपकी, और चलिए लेके चलता हूँ आपको अगली रिक्वेस्ट की ओर। सफ़ी वॉन्टेड टू लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक टेकन फ्रॉम द मूवी जवान। सफ़ी, सॉन्ग गोइंग आउट टू यू एंड यू आर डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू योर डैड ऑन हिज बर्थडे।

हाँ मोनिका फ्रॉम द मूवी खूली ऑफ कोर्स. जैसा दिस मोनिका सॉन्ग ऑफ कोर्स इट्स इन डिफरेंट लैंग्वेज टू ऑन दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू पूजा हेगड़े. एंड पूजा हेगड़े से मुझे याद आया, पूजा हेगड़े ओन्स अ सॉन्ग दैट हैज़ बीन डन बाय दिशा पटनी वन मोर टाइम. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्लू अर्जुन सॉन्ग दैट पूजा हेगड़े डिड कॉल सिटी मार. एंड माय गॉड द ओरिजिनल वर्जन द तेलुगु वर्जन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. दे ट्राई टू रिक्रिएट दैट सॉन्ग विद सलमान खान एंड दिशा पटनी. इट फेल्ट वे शॉर्ट एंड दैट सॉन्ग वेल दिस वन वॉज मोनिका वॉज पूजा हेगड़े. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की रिक्वेस्ट आई थी, टेकिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ बाहुबली. यस जी हाँ, टेकिंग यू ऑल द वे बैक टू बाहुबली. एंड देर वॉज एन आइटम नंबर सॉन्ग इन दैट मूवी कॉल्ड मनोहरी. एंड अगर मनोहरी आपने देखा नहीं होगा तो दैट वॉज अ सॉन्ग वेयर प्रभास एक्सीडेंटली स्टम्बल्स इन टू अ लोकल वाटरिंग होल, अ बार सो टू स्पीक. एंड देन देर आर थ्री गर्ल्स हु आर डांसिंग एंड वन ऑफ दोज थ्री गर्ल्स इज नोरा फतेही. एंड दिस सॉन्ग इज वॉट पुट हर ऑन द मैप.

0: हाँ दैट वाज मनोहरी टेकन फ्रॉम बाहुबली ऑफ कोर्स. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. और वी हैव अ कॉलर ऑन एयर विद अस. हु डू वी हैव ऑन एयर विद अस?
1: यू हैव नेविन सुमार.
0: नेविन सुमार, यस, वेलकम टू फाइनेंशिया मैम. हाउ आर यू?
1: आई एम ओके, हाउ आर यू गाइस?
0: आई एम डूइंग वंडरफुल. हाउ इज योर इवनिंग गोइंग?
1: वेरी बिजी सेलिब्रेटिंग बर्थडे.
0: सेलिब्रेटिंग बर्थ, नाइस. किसका बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो नेविन?
1: मेरी बेटी का.
0: ओह लवली. एंड आई एम नॉट गोना आस्क यू हाउ ओल्ड शी इज. ऑफ कोर्स यू आर. व्हेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम?
1: 43. शी जस्ट टर्न 43.
0: ओके. आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग बट आई हियर 21.
1: ओके. इट्स फॉर निमिरा इब्राहिम.
0: निमिरा इब्राहिम,
1: फ्रॉम ऑल ऑफ अस.
0: What is so special? If you close your eyes and think about your daughter, what comes in your heart?
1: Oh, my heart. We love her so much. She's always there for us. She's a good girl. She's a lawyer. She has two kids. Anytime we call her, she's always there for us.
0: Absolutely fantastic. And you told me, where are you calling from?
1: From Toronto.
0: वेट ए सेकेंड, लाइन थोड़ी खराब लगती है मुझे. आप बोल रहे हो डैलस, मुझे टोरंटो सुनाई दे रहा है. आप कहाँ से कॉल कर रहे हो?
1: टोरंटो से
0: ही कॉल कर रहे हो. नाइस नाइस. यू ट्यून इन ऑल द टाइम एंड यू कॉल ऑल द टाइम. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. एंड वेल, दिस बर्थडे बैश सॉन्ग गोइंग आउट टू योर ब्यूटिफुल डॉटर. एंड अगर गुस्ताखी हो गई तो माफ कर देना. ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड ऑफकोर्स.
1: चलिए. हर नेम इज निमिरा इब्राहिम. सो हैप्पी बर्थडे निमिरा. From all of us, wish you all the best. Happy. Many, many more to come, beta.
0: Absolutely. Many,
1: we
0: many
1: love
0: more
1: you
0: to come.
1: So much.
0: Many, many more to come. And Nimira, right? Nimira Ibrahim.
1: Yes.
0: Nimira Ibrahim, yes. What a beautiful name. What does the name mean, Nimira?
1: She's there. She's listening.
0: What does the name mean? Naam ka matlab kya hota hai? Just as
1: Nimira,
0: naam,
1: what's the name? Nimira.
0: ठीक है, कोई नहीं. चलिए मैं बजाता हूँ गाना. बर्थडे बैश गोइंग योर वे निमिरा. हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आरजे सोमिलान, द एंटायर टीम ऑफ फनेशिया एंड द लिसनर्स ऑफ फनेशिया राइट हियर फ्रॉम टीएफडब्ल्यू एंड बियॉन्ड. बर्थडे बैश कमिंग योर वे, ब्रिंगिंग योयो हनी सिंह फॉर यू.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू. वी लव यू ऑल.

Nimra ka hai birthday bash, and Nimra is a name linked to Arabic, Persian, and South Asian roots. It's widely considered. Iska meaning hota hai very graceful, very elegant, and melodic variant. Jee haan, this has roots in Asian and Persian region and South Asian theme attached to it. It means graceful. Happy birthday, Nimra Abraham! One more time from entire team of Funasia. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. जाने का वक्त हो रहा है मेरा. चलते चलते आखिरी गाने सुनाते चलता हूँ आपको तेज रफ्तार के साथ. अगर आपने मूवी देखी है तो दिस मूवी, दिस सॉन्ग इज राइट आफ्टर दे कम आउट फ्रॉम द पार्टी. रिमेंबर दैट. हियर्स द सॉन्ग. वन थिंग आई एब्सोल्युटली मिस्ड व्हाइल आई वाज गॉन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स इज व्हाइल आई वाज इन एलए आई मिस्ड राइडिंग माय बाइक. एंड अलग ही मजा होता है यार. व्हेन यू आर ऑन द बाइक इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट वर्ल्ड. व्हेन द विंड हिट्स यू आर 90 माइल्स 60 70 80 माइल्स एन आवर. व्हेन योर फेस एब्सोल्युटली थ्रिलिंग. हियर कम्स मानिका.

तेरा हो जाऊं है जवानी तो इश्क होना है, विच इज प्लेइंग ऑन योर सिल्वर स्क्रीन थिएटर राइट इन योर नेबरहुड। चलिए लेके चलता हूँ आखिरी गाने की ओर, और मिलूंगा मैं आपको कल शाम ऑन जीरे जरा, माय सिग्नेचर शो ऑन सैटरडे नाइट 6 to 9। वी विल किक अप सम नॉचेस एंड वील टेक यू रॉकिन टुमारो नाइट। चलिए चलते चलते आखिरी गाना सुनाता हूँ, एंड थैंक यू फॉर प्लेइंग अलॉन्ग टू नाइट। दिस इज योर होस्ट आर जे सौमिल स्टेपिंग इन फॉर आर जे स्वाति। मिलूंगा मैं आपको कल शाम, इन द मीन टाइम

0: Asia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी लड़की है आफत कहती

0: दिस इज वाणी कपूर एंड कीप लिसनिंग टू पान एशिया रेडियो.
1: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
2: I love it.
1: The ultimate celebration of music and rhythm.

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

revolution and let the good times roll.

0: Shakti Magic 24/7 only on 104.9 FM.
1: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता. He's wrong. Watch me.

0: समझ है? हाँ
1: बढ़िया।
2: बोरिंग दिनचर्या में
3: घोलिए नए रंग फनेशिया रेडियो के संग।

0: दीजिए, बताइए कहाँ ले चले?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटनायक साहब ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रुकते नहीं ना एक्चुअली।

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: है फिसेस को नहीं, उनकी बीवियों का बात करना जरूरी है।
1: Oh baby, variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
6: Listening to Fun Asia.

जान लेके किस्मत ने बांटे हैं राहों में कांटे हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।
1: ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा।

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
2: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Funny Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: Satisfied. We're winners. Give one reason to come alive.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।
2: फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Cinco.
1: Desi Swag.
2: Desi Swag.
1: Bollywood Tag. Fun Asia.
2: Fun Asia.

0: एंटरटेनमेंट से करते मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: 9FM Funisha. Fun bana fun done.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, opposite to the कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को,
4: first ever authentic सात्विक flavors with no onion and garlic,
3: where every divine food is an offering. Open daily from 7 a.m. located at Independence and Eldorado. श्री अयोध्या भवन, where taste meets divinity.
5: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct time removes dust, pollen, allergens, and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings, and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
6: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
6: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब। आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी, फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
8: चिकन बनाना
9: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
10: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में? सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: brands, happier memories.
1: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
2: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
3: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो।
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
11: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
12: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company, and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत हम आपके कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद कर रही हूं कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, और अब जुड़े हैं आप मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी वेयर आई एम गोइंग टू टेक यू टू सम फैंटास्टिक ट्रैक्स एंड अ ग्रेट टॉपिक अ लिटिल बिट लेटर दिस मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं कुछ प्यारे गीतों के साथ, और यू नो वी गोइंग टू स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल मेलोडियस ट्रैक एंड देन टेक इट अप अ लिटिल बिट एंड देन वी विल गेट इनटू आवर थीम दिस मॉर्निंग। वैसे फिलहाल अगर कोई खास तौर पे कोई गाने सुनना चाह रहे हैं, कोई डेडिकेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, एनीथिंग दैट यू'ड लाइक टू शेयर, यू कैन गिव मी अ कॉल हियर एट 972-235-5555। बहुत ही प्यारे गीत के साथ शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। एंजॉय इट।

बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेलोडियस गीत। यहाँ से ले चलती हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत की ओर, आहिस्ता आहिस्ता। फिल्म का नाम बचना है हसीनों।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: I am getting ready to get us our theme for this morning, and I am guessing you are awake. If you are awake, and for the next few minutes, if you want to listen to a specific song, give me a call and let me know which one that is going to be. The number is going to be 972-235-5555 for this request and anything else you want to share all the way until 10 a.m. Sun rahe aap Music Mantra, jisme main hu aapke sang Sangeeta. आगे बढ़ने से पहले आपको देती हूँ एक नाम, आपको याद रखना है ये नाम, और फिर दूंगी इनका फोन नंबर भी. वेल, चलिए शुरुआत करते हैं इनके फोन नंबर और नाम से. द नेम टू रिमेम्बर इज अटर्नी उमर ख्वाजा. द फोन नंबर इज 4693005046. यू गोइंग टू कीप दिस नेम एंड नंबर हैंडी, बिकॉज जब सच में जरूरत पड़ती है ना, आपने वो नंबर चाहिए होता है. और वो जरूरत कब पड़ती है? वेल, इन केस यू और समवन यू नो इज इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट, या चाहे वो हो स्लिप या फॉल इंसिडेंट. दोस्तों, अटर्नी उमर ख्वाजा आपके केस के लिए लड़ेंगे और आपकी मदद करेंगे टू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. इस वक्त पे जब कोई यू नो इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तब इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, और उनके साथ डील करना बहुत ही कठिन काम है. तो यू नीड एन अटर्नी बाय योर साइड दैट विल हेल्प, दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू विन. तो वो फोन नंबर याद है ना? नहीं तो लिखिए अभी 4693005046. यू कैन कॉल देम अप एंड गेट अ फ्री कंसल्टेशन एज वेल. यू कुड ऑल्सो विजिट द वेबसाइट विच इज attorneyomar.com and get all the information you need, so when tragic occurs, when bad times hit, you have an accident or an incident that you need help with, you can definitely reach out to them right away.
0: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Phoenicia Radio.
1: Another fantastic song for all of you here.

0: More exciting songs after a break.
1: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
12: Tune sunte hi brand click kar gaya na, just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
13: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: हाय, दिस अक्षय कुमार एंड यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो।

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। वेल, आई एम गोना ओपन द शो विद दिस फैंटास्टिक सॉन्ग एंड आई एम गोना आस्क यू, आप पहचानते हैं इस गाने को, इस गाने के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे बताएंगे आप 972-235-5555 पे। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। सुनिएगा, इंजॉय भी कीजिएगा इस गाने को।

0: Yes, you got that right. The Sir Sir is the official FIFA World Cup 2026 anthem, and it's been created by artist and the dancer Nora Fatehi, unke saath French rapper Vega Dream and Grammy nominated producer Son Joy. And this high energy track definitely blends global sound and celebrates the global passion for football. And Sir Sir actually means go, go, and in the sense of go forward, go forward. Fantastic one done by Nora.
1: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Phoenicia Radio.
0: और इस गाने से शुरुआत कर रहे हैं तो आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा दैट वी आर रियली एक्साइटेड फॉर द वर्ल्ड कप हैज अराइव्ड एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट इट कमिंग टू डैलस. एंड डैलस में काफी सारे गेम्स हैं. इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ये स्पोर्टिंग इवेंट जो है पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नॉर्थ अमेरिका पे आया है, और हमें बहुत ही गर्व है कि हमारा शहर यानी कि डैलस फोर्ट वर्थ रीजन में भी ये ग्लोबल सेलिब्रेशन का हिस्सा होगा. एंड इन फैक्ट डैलस इज होस्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स बीइंग होस्टेड बाय एनी सिटी इन दिस वर्ल्ड कप मैच, यानी कि अ वॉपिंग नंबर ऑफ गेम्स, एंड दैट इज नंबर 9. 9 games will be played here, and Dallas is about to become a global stage. I want to say starting tomorrow when they'll play their first game right here at the AT&T Stadium, jo ki ye venue officially is being called the Dallas Stadium. And is stadium ke baare mein kuch baatein karenge, but you know, it takes a lot. It takes a lot to be a part of the World Cup, as you can imagine. वर्ल्ड कप पे जाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है इन खिलाड़ियों को. देयर इज अ होल लॉट दैट गोज इन. देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग, लॉट ऑफ टैक्टिकल मीटिंग्स, देयर इज अ प्रेपरेशन, देयर आर ट्रेनिंग कैंप्स एंड द डेली रूटीन. एंड बेस्ड ऑन दैट वील हैव अ कपल ऑफ सॉन्ग्स, मोटिवेटिंग ट्रैक्स राइट हियर ऑन म्यूजिक मंत्र, जिसमें मैं हूं आपकी संगीता.

और हमारे शहर में काफी कुछ होने वाला है अगले 4 हफ्तों के लिए. आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस. आई मीन दिस इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड इन वन सिटी. एंड यू नो व्हेन दिस हैपेंस थिंक अबाउट इट, यू नो काफी सारे लोग एक्चुअली हमारे शहर में आ चुके हैं. और अगर आप कहीं चले गए, जैसे कि कोई कॉफी शॉप में चले गए या कोई दुकान पर चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, यू गोना फाइंड सपोर्टर्स एंड फैंस फ्रॉम प्लेसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. रियली नॉट लिमिटेड टू द 48 टीम्स दैट आर हियर फ्रॉम 48 डिफरेंट कंट्रीज, बट यू नो आई थिंक पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एक्साइटेड अबाउट द वर्ल्ड कप. एंड कॉफी शॉप में आप बैठे हैं, यू गोइंग टू सी सम फैंस फ्रॉम ब्राजील, और यू मे यू नो यू माइट मीट सम पीपल फ्रॉम फ्रांस, दे आर हियर टू सपोर्ट द टीम. या तो कहीं लॉबी में आप खड़े हैं तो अर्जेंटीना या कहीं जर्मनी के फैंस दिखाई देंगे. एंड यू नो फॉर सम टाइम, यानी कि फॉर 4 वीक्स, आई कैन टेल यू दैट आर सिटी इज गोइंग टू बी लाइक वन बिग मेल्टिंग पॉट, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट.

0: और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
1: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dance for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
2: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shadi India mein kare?
3: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
2: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपकी संगीता, आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। और हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत, जिनमें आज बातें हो रही हैं भाई वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप के डैलस में आने की। आई मीन दैट इज रियली रियली स्पेशल, इजंट इट? आई मीन आवर टाउन इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग इन टू दिस बिग वर्ल्ड स्टेज, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड to be here and to be talking about what all we can expect with the World Cup right here in our backyard. If you have anything to add to this, feel free to give me a call in the studio. Studio ka number hai 972-235-5555. Aap mujhe bata sakte hain, aap kaun si team ko root kar rahe hain, who are, you know, you fan of what countries are you supporting, kaun si hain ye jagahein, bataye mujhe 972-235-5555 pe, while I take you and move you forward into the show by saying ki bhai hamare shehar mein aayenge to Texas hospitality bhi to dekhenge, the teams, the players, the fans, the celebrities, the stars, the sports stars, they are all here. What do you think we can show them in terms of Texas hospitality? Let me know at 972-235-5555.

0: तो इतने लोग जब डैलस आएंगे, हमारे शहर आएंगे, तो हम इनको क्या दिखाएंगे? वी नॉट जस्ट गोइंग टू प्ले फुटबॉल, राइट? बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ टाइम बिसाइड्स दीस फुटबॉल गेम्स दैट यू आर वाचिंग और एक्सपीरियंसिंग. वेल, दे गोइंग टू कम एंड डिस्कवर टेक्सास. दे गोइंग टू कम चेक आउट सम टेक्स मेक्स फूड, एंड दैट टेक्स मेक्स फूड इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स मेक्स फूड इन एनी अदर स्टेट. आई मीन, टेक द नॉर्थ ईस्ट फॉर एग्जाम्पल. इट्स रियली डिफरेंट. इट्स नॉट the real thing that we've got to understand Tex-Mex food as those tacos here in Dallas-Fort Worth versus a taco somewhere else. It is a completely different experience. They're going to come enjoy some barbecue. Texas is very well known for barbecue. You're going to enjoy Texas barbecue. You're going to enjoy the music and the entertainment and the cowboys culture. Now, if you would agree with me, you have a guest in town, jo ki aaye hain वर्ल्ड कप देखने डैलस में, आप उनको डेफिनेटली फोर्ट वर्थ ले जाएंगे, फोर्ट वर्थ की स्टॉक यार्ड्स ले जाएंगे, एंड यू गोना मेक इट एन इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर देम, राइट?
1: द दिल ऑफ डैलस, हार्ट टू हार्ट, फन एशिया.
0: डैलस, योर टाइम इज हियर. आपका टाइम आ गया है. डैलस इज शाइनिंग, एब्सोल्युटली शाइनिंग.

टाइम आ चुका है वर्ल्ड कप 2026 का और डालस में आ चुका है और बहुत ही एक्साइटमेंट है एंड द एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग. द फर्स्ट गेम इज गोइंग टू बी प्लेड हियर इन डालस टुमारो एंड यू हैव विजिटर्स इन टाउन. तो मैं कुछ अपने शहर के बारे में बताना चाह रही हूँ, यहाँ जहाँ मैं 30 साल से ऊपर से रहती हूँ. और I call Dallas an amazing city. It has grown a lot and very, very excited to show it off. तो अगर आपके घर पर कोई आया है वर्ल्ड कप देखने और उनके पास बस एक या दो दिन है, आप कहाँ ले जाएंगे इन्हें डालस फोर्ट वर्थ में, मुझे बताइएगा और फिर मैं वो लिस्ट को कंपाइल करके सबके साथ शेयर करूंगी. तो बताइएगा मुझे एट 972-235-5555. लिसनिंग टू सम team related some sports related songs here.

ऑल राइट, यहाँ के हम सिकंदर, जब गेम्स पूरे हो जाते हैं ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी विक्ट्रीज एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन. तो अगर आप सेलिब्रेशन के लिए कहीं जाना चाहेंगे राइट आफ्टर अ गेम और यू नो जस्ट एनीवेयर इन डैलस फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स टू एंजॉय द सिटी, वेयर वुड यू गो? गिव मी अ कॉल एंड लेट मी नो व्हाइल आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड कनेक्टिंग अमेरिका, where you can turn your business expenses into a powerful income stream through a unique insurance-based strategy designed to boost your bottom line. And it doesn't stop there. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So, देर किस बात की, अभी फोन उठाइए, कॉल कीजिए. You can talk to James at 321-888-7345. या विजिट कीजिए connectingamericafinancials.com एंड स्टार्ट टर्निंग योर डेली एक्सपेंसेस इनटू इनकम. कनेक्टिंग अमेरिका, वेयर स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट इनटू कैश. डैलस में तो फिलहाल बहुत रौनक शौनक है, एंजॉय कीजिए इसे.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
2: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
4: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज हजारों फैमिलीज का भरोसा विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री NMLS 2025289 लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल इक्वल हाउसिंग लेंडर
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
7: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
8: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
9: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
8: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
6: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
12: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे
15: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी कॉल तो करो 888-888-9914
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम
16: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर
17: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था सवाल कि अगर आपके यहाँ कोई विजिटर आए हैं टू वॉच द वर्ल्ड कप राइट हियर इन अ मेट्रोप्लेक्स, व्हाट ऑल वुड यू डू, वेयर वुड यू टेक देम? तो जवाब में है, यू वुड डेफिनेटली टेक देम टू ए टेक्सस बारबेक्यू स्पॉट, यू वुड टेक देम टू अ रियली कूल टेक्स मेक्स रेस्टोरेंट टू एंजॉय द टैकोस दैट आर डन इन टेक्सस सो डिफरेंटली फ्रॉम एनी अदर प्लेस इन द कंट्री, एंड यू वुड गो टू द फोर्ट वर्थ स्टॉकयार्ड्स फॉर द बेस्ट काउबॉयज कल्चर. Now I want to add to that some special initiatives that have been taken for FIFA 2026 in our Metroplex, and that includes the FIFA Fan Festival at Fair Park, where there will be city celebrations, there will be visitors who will enjoy giant outdoor screens for all the matches, all 104 matches, for live music and for diverse food and beverage options. Iske alawa, there are going to be watch parties in very iconic places as well, including free public watch parties with a giant LED screen, with food trucks, with dining and live entertainment at Clyde Warren Park. Uske alawa, a pre-game and a watch party hub is going to be at Texas Live in Arlington. And there are some local things that are also going on, and I will mention to you after this song.
1: Natural night. Do you feel alright? Wanna natural night?

0: Alright, it's party time too. World Cup ke jeetne ke baad, there's going to be celebrations, there's going to be parties, you want to be there. But I also want you to remember that you're going to have a lot of fun at the concert that I'm going to talk to you about. And that concert is with Vishal Shekhar Live. And they are going to come to entertain you with some of Bollywood's biggest super hits. And they are bringing the super hit tour to Dallas on Sunday, July 12th. And this is going to happen at Curtis Culwell Center, which is in Garland. And Vishal Shekhar, मतलब नाम सोच के ही आप पता कर सकते हैं कितनी एनर्जी होगी इनके कॉन्सर्ट में, कितने बढ़िया गीत होंगे. आई मीन एक से एक बढ़िया गाने. और आपका जो प्लेलिस्ट है ना, वो इट्स गोइंग टू कम अलाइव. यू गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन, यू गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम. फॉर दैट एंड मोर, यू गो अहेड एंड चेक आउट काश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम एंड गेट योर टिकट्स राइट नाउ.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर .com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, opposite to the कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
9: First ever authentic सात्विक flavors with no onion and garlic.
8: Where every divine food is an offering. Open daily from 7 a.m. Located at Independence and Eldorado. Shri Ayodhya Bhavan, where taste meets divinity.
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 of duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
11: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ?
13: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
14: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com.

0: the Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
1: चिकन बनाना
2: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
3: दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट सैल्स नैशविल हॉट चिकन दे डोंट जस्ट मेक इट दे मेक इट अनफॉरगेटेबल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स बोल्ड फ्लेवर्स जंबो चिकन टेंडर्स नैशविल सैंडविचेस दैट एक्चुअली हिट लोकेटेड इन प्लेनो एंड रिचर्डसन सैल्स नैशविल हॉट चिकन वी फिक्स हैंग्री
4: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
5: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Fun Asia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट, जहां ले चलती हूं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी डेस्टिनेशन पर, जहां या तो आप जा चुके हैं या वो आपकी बकेट लिस्ट में होती है, या मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो आपके बकेट लिस्ट में डेस्टिनेशन आ जाए। सो वेल, स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM, All about FIFA, right? So, आज मैं बताऊं, coming back to Just Chill, हमारे travel segment में हम आज बात करने वाले हैं बैम्फ की। जी हाँ, so अगर आप बैम्फ या जैस्पर जा चुके हैं और कुछ सुनहरी यादें हैं, कुछ मज़ेदार बातें हैं जो करना चाहें याद एंड शेयर, then the studio number once again is 9722355555.

Well, that was a taken from the movie कयामत से कयामत तक, गजब का है दिन. यस, आज हम बात कर रहे हैं बैम्फ की. सो बताऊं आपको, दैट ये जो बैम्फ नेशनल पार्क है ना, ये कनाडा का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, एस्टैब्लिश इन 1885. और अगर आप डालस से जाएंगे तो 3.5 घंटे की फ्लाइट है टू कैलगरी, सो यू कैन टेक दैट. एंड आपको मैं बताऊं कि जब हम गए थे करीब 3-4 साल पहले, तो यू नो वी कम अक्रॉस, जब आप फ्लाइट में ही होते हैं, अगर आप नीचे देखे हैं, तो यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ बैरन लैंड. यू स्टिल सी सम रोड्स नाउ एंड देन, बट बहुत सा बैरन लैंड आपको लैंड होने के पहले दिखने लगता है. सो यू नो इट्स सम, आई मीन अभी जो गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ, दैट्स द सॉन्ग विच केम टू माई माइंड वेन आई सॉ दैट काइंड ऑफ अ लैंडस्केप. दिस इज बिफोर लैंडिंग इन टू कैलगरी.

Well, that was a Satrangi Re taken from the movie Dil Se. और दिल से होता है ना कि यार एक घर हो अपना. So well, आपको मैं ड्रीम होम मोर्गेज के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज ड्रीम होम मोर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड उनकी जो एक्सपर्ट टीम है वो डिलीवर करती है आपके लिए स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस. तो आप अपना जो ड्रीम होम है वो रियलिटी बना सकते हैं विद ड्रीम होम मोर्गेज. फॉर मोर डिटेल्स आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 972-245-5626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com.

राइट, तो मैं बता रही थी कि 3.5 घंटे की फ्लाइट है जब आप बैम्फ जा रहे होते हैं फ्रॉम डैलस टू कैलगरी, राइट? एंड कैलगरी लैंड होने के पहले काफ़ी बैरन सा लैंड आपको दिखता है. एंड आई रिमेम्बर कि जब हम काठमांडू गए थे तो हमें कुछ वैसे ही लैंडस्केप दिखा था. सो दिस इज़ नथिंग टू डू विद बैम्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट कैलगरी जो कि 3.5 घंटे की फ्लाइट है. एंड वहाँ से फिर देन यू रेंट अ कार, आई मीन वी रेंटेड अ कार एंड देन वी ड्रोव. लेकिन हाँ, कैलगरी लैंड करने के पहले आपको काफ़ी कुछ जो लैंडस्केप दिखती है वो, अगर आप काठमांडू गए हों तो जिस तरह की लैंडस्केप आपको लैंड करने के पहले दिखती है ना, वैसा ही कुछ दिखता है वहाँ पे.

0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
1: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu, dhua dhua. Kyon sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
4: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
5: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
6: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहां हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
5: सच में बिल्कुल घर जैसा।
6: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: Now sir, on price?
3: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
13: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां करते हैं हम as the name suggests, जस्ट चिल. वेल, जस्ट चिल के आज हमारे ट्रैवल सेगमेंट में हम बातें कर रहे हैं बैम्फ की. सो अगर आपको कनाडा के ये बैम्फ नेशनल पार्क में जाना है, फ्रॉम डैलस यू कैन टेक 3.5 hour फ्लाइट टू कैलगरी. एंड आई कैन टेल यू कि कैलगरी जब आप पहुंचते हैं तो यू स्टार्ट सीइंग दोज स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड दे आर सो ब्यूटिफुल.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: वेल होता है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी यू डू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ कार या फिर ट्रक एक्सीडेंट या कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट, तो आपको रखना है एक ही नाम याद, क्योंकि होता है ना कि हड़बड़ाहट में कुछ समझ नहीं आता क्या करें, किसके पास जाएं, हु शुड वी अप्रोच। सो वेल अटर्नी ओमर ख्वाजा, ये नाम रखें याद, एज ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। साथ ही साथ ही डील विद ऑल द स्ट्रेस you know related with insurance companies and you do not pay until you win. To ek free consultation ke liye aap unhe call kare 4693005046 or visit attorneyomar.com, that's attorneyomar.com.

Well, that was इश्क जलाकर taken from the movie धुरंधर. And yes, आज हम बात कर रहे हैं बैम्फ की. तो कैलगरी लैंड करके वी टुक अ रेंटल कार एंड वी ड्रोव टू अ प्लेस कॉल्ड कैनमोर. कैनमोर जो है करीब 1.5-2 घंटे दूर है कैलगरी से. एंड इट्स अ वेरी सीनिक ड्राइव. यू कीप यू नो लुकिंग एट दोज स्नो क्लैड माउंटेन्स, ग्रीनरी. एंड हम गए थे जून में. इनफैक्ट इन्हीं दिनों गए थे. एंड इट्स बीन 4 ईयर्स. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. द वेदर वॉज परफेक्ट. सो यू नो वो वादियाँ देख के ऑफकोर्स द नेक्स्ट सॉन्ग विच आई एम प्लेइंग इज वॉट एग्जैक्टली केम इन माई माइंड. सो हियर इट इज़. एन्जॉय.

Well, that was Haseen Wadiyan taken from the movie Roja. अच्छा, Texas Primary Care एक नए नाम से, Lenoxy Medical के नाम से is growing, you know, and this is in Frisco location. 13 साल से Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community, और अब फ्रिस्को लोकेशन में एक नए नाम से, विच इज़ लिनॉक्सी मेडिकल, इट्स देयर फॉर यू. फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सिटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स, हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ. तो आप ये सब कुछ, इनमें से जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, यू कैन जस्ट गो टू दिस प्लेस. इट्स इन फ्रिस्को एंड इट्स ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM टू 8 PM एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम. देर इज नो अपॉइंटमेंट नीडेड. सो दैट्स लिनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को.

पर हम भी आपसे हकीकत ही कह रहे हैं कि कई बार होता है कि वीकेंड आ गया, समर ब्रेक चल रही है, कहीं कहाँ कुछ अच्छा खाने का मन है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। तो हम हैं ना आपके लिए। तो आपको बताऊँ मैं तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में। अगर आपको सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स या रिच करीज या कुछ नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स अपने होम स्टाइल पंच के साथ खाने हैं, स्मोकी तंदूरी कबाब्स या फिर वेलवेटी करीज या फ्रेश हॉट नान खाने का मन है, तो फिर आपको जाना है तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट। जी हाँ, एज यू कैन स्टेप इन टुडे एंड लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ फीस्ट। तो तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जो है इज़ लोकेटेड इन गार्लैंड, सो यू कैन गो। अगर आप गार्लैंड में हैं, जाने वाले हैं या चले जाएँ, क्या है, वीकेंड है, सो यू कैन एंजॉय द ड्राइव एंड एंजॉय दिस रेस्टोरेंट एंड द डेलिकेसीज।

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम as the name suggest, just chill. तो सैटरडे होता है ट्रैवल सेगमेंट, जहाँ आज मैं आपको ले चली हूँ कनाडा के बैम्फ नेशनल पार्क में. एंड जैसा कि मैंने कहा कि हम करीब 4 साल पहले इन्हीं दिनों गए थे बैम्फ, एंड द वेदर वॉज रियली गुड. इट्स अ वेरी सीनिक प्लेस एंड काफ़ी कन्वीनियंट है, आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं. कैलगरी की फ़्लाइट लें, वहाँ से कुछ 1.5-2 घंटे की ड्राइव है. एंड देन द नेक्स्ट डे वी डिसाइडेड टू गो टू लेक मोरेन, एंड देन वी वेंट टू लुइस विलेज फॉर लंच. एंड द होल रोड, यू नो, दिस होल ड्राइव इज़ वेरी सीनिक, फुल ऑफ ग्रीनरी एंड ब्यूटिफुल स्पॉट्स ऑफ नेचर, जहाँ आप खूब सारी दिल भर के, मतलब मन भर के, दिल भर के पिक्चर्स लें. एंड ऑल द पिक्चर्स, ट्रस्ट मी, विल कम आउट सो प्रिटी, बिकॉज वो है ही इतनी खूबसूरत जगह. जगह जगह कहीं आपको कोई नहर दिखेगी, या कहीं वाटरफॉल दिखेगा, या कहीं कोई फ्रोजन लेक दिखेगी. इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग.

0: to heart, Funasia.
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Funasia 104.9 FM.
2: Alright, सुन रहे हैं आप 104.9 FM Funasia Radio, bringing the community together. मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं Just Chill, जहां कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, बैंफ की और बातें बताऊंगी, लेकिन पहले ये जो गिव अवे है जो कि आया है चंडीगढ़ बाइट्स एलन की तरफ से, उसके बारे में बताना चाहूँगी. तो पहले तो आपको बताऊँ कि आप चंडीगढ़ बाइट्स एलन जाएं और उनकी स्पेशल थाली जो मंडे थ्रू फ्राइडे होती है विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली, वो इंजॉय कर सकते हैं. इट्स लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. यू कैन विजिट chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स. एंड अब है आपके लिए एक सवाल. सवाल ये है कि आपको मुझे बताने हैं बॉलीवुड के या हिंदी पॉप एल्बम्स के कोई भी ऐसे तीन गाने जो कि जिनकी लोकेशन जो है कहीं नेचर में शूट हुई हो, लाइक द वीडियो शुड हैव बीन शॉट इन सम नेचुरल सीनरी. कोई मतलब स्टूडियो के अंदर नहीं, बट सचमुच नेचर के बीचों बीच वो गाना जो है वो शूट हुआ हो. सो टेल मी एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स और हिंदी पॉप एल्बम सॉन्ग्स विच हैव बीन शॉट इन नेचर. एंड आप क्या जीतेंगे? वेल, आपको मैं बताऊँ दैट यू विल विन समथिंग नाइस. यस, हियर इज अ चांस टू विन द कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन. तो अगर आपको कढ़ाई पनीर या ये कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एलन से जीतना है तो आपको मुझे कॉल करना है. द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555 एंड टेल मी एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स दैट हैव बीन शॉट अमिड नेचर, लाइक कहीं स्टूडियो में नहीं बट एक्चुअल नेचर में वो गाने शूट हुए हों.

taken from the movie Dil Se, that was Jia Jale. And yes, अब आपके लिए आ रहे हैं विशाल एंड शेखर लाइव अपना सुपरहिट टूर लेकर टू डैलस. ये होगा संडे 12th ऑफ जुलाई एट द कर्टिस कर्वल सेंटर इन गार्लैंड. सो यू कैन बाय योर टिकट्स नाउ, दे आर ऑन सेल एट cashpatelproductions.com एंड यू कैन एंजॉय जो आपकी प्लेलिस्ट है वो लाइव. जी हाँ, बिकॉज मोस्टली आपकी प्लेलिस्ट में इन्हीं के गाने होते हैं. सो यू नो, हाउ अबाउट एंजॉय देम लाइव. जी हाँ, द सुपरहिट टूर इज कमिंग टू डैलस ऑन जुलाई 12th. इट्स अ संडे, इट्स गोइंग टू बी एट कर्टिस कर्वल सेंटर इन गार्लैंड एंड टिकट्स कैन बी बॉट एट cashpatelproductions.com. द कैश इज बिगनिंग विद अ के, सो इट्स KASH, cashpatelproductions.com.

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic remover हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
6: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
4: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
7: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: जिस बात का डर था वही हुआ. Lymphosarcoma of the intestine.
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई. लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना. एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.

सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, देती हूं आपका साथ सैटरडे एंड संडे 10 AM टू नून ओनली ऑन 104.9 FM. सो वेल, आज हम अपने ट्रैवल सेगमेंट में बातें कर रहे हैं बैम्फ की, तो बताऊंगी कुछ और मज़ेदार बातें, लेकिन पहले सुनते हैं ये अगला गाना, विच इज़ अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एन.

Taken from the movie तेरी कसम, that was, ये जमी गा रही है. वेल एक्चुअली बैंफ जाएं तो ऐसा ही लगता है कि ये जमी गा रही है, आसमां भी गा रहा है, साथ हम सबके, सारा जहां गा रहा है, यू नो, बिकॉज द सीनिक ब्यूटी इज सच. अच्छा, अगर मैं बैंफ की बात करूं तो हम लुइस लेक गए थे फॉर अ ट्रैक, एंड वहाँ पे यू नो पार्क एंड राइड बसेस भी होती हैं वे यू कैन रिजर्व अ स्पॉट, एंड देन पार्किंग कैन बी इश्यूज एट टाइम्स, स्पेशली अगर पीक टाइम पर आप जाएंगे तो यू कैन ऑलवेज पार्क एंड राइड देयर, एंड देन यू शुड डेफिनेटली गो टू शातो फेयरमोंट. अच्छा, यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना बड़ा मुश्किल है, तो अगर आपको रहने का ठिकाना ना मिले ना, फिर भी आई रिकमेंड कि आप वहाँ जाएँ, बिकॉज वो जो लोकेशन है उस होटल की इज़ वेरी सीनिक, एंड वहाँ पे बहुत सी ट्रैक्स हैं, छोटी बड़ी मीडियम हर हिसाब की, तो आप खूब सारी पिक्चर्स भी खींच सकते हैं, एंड साथ ही साथ वो ट्रैक कर सकते हैं. द ट्रैक कैन बी वेरी स्टीप, एंड सो यू नो लेक लुइस इज़ वेरी सीनिक हाउएवर एंड एब्सोल्युटली स्टनिंग टू लुक एट, तो वो आप कर सकते हैं. एंड देन ऑफकोर्स नेक्स्ट डे वी वेंट टू आइस फील्ड स्काई वॉक. अगर ये आपने कभी नहीं किया है तो आई अगेन रिकमेंड दिस प्लेस. बहुत ही अच्छे से उन्होंने कन्वीनियंटली ये सब बनाया हुआ है, एंड बैंफ में एक रोड है, उस रोड पर अगर आपको सिग्नल ना भी मिले, आपका जीपीएस ना भी चले, तो भी यू विल ऑटोमेटिकली स्टॉप एट दो स्पॉट्स, बिकॉज वो स्पॉट्स हैं ही इतने सीनिक कि आपको अपने आप ही लगेगा कि यार गाड़ी रुको और यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताते हैं. सो यू नो यू कांट मिस दोज स्पॉट्स.

Well, that was taken from the movie Kaho Na Pyar Hai. And the next song, well, that's a dedication coming from Safi for his dad as it's his birthday. So wishing you a very happy birthday and thank you so much, Safi, for calling in. And yes, Banff ki main baat kar rahi hoon, right? So agar aap ye ice walk, jo sky walk hai, usmein jayenge, it's a 3-hour drive. Aap Athabasca Falls per jayen and you know, then you can start driving back. And then you'll see Sunvapta Falls, Glacier Skywalk, and if possible, stop at the Columbia Icefield, Parker Ridge, Big Hill and Big Bend. And then there's this Weeping Wall. Basically, वो क्या है कि एक बड़ी सी वो माउंटेन रेंज कह लें या जो भी कह लें एंड वहाँ पे ना छोटे छोटे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं तो इट लुक्स लाइक अ वीपिंग वॉल. सो अगेन यू कैन क्लिक लॉट्स ऑफ गुड पिक्चर्स ओवर देयर एंड ऑफ कोर्स यू कैन जगह जगह ना छोटे छोटे कैफेज़ हैं तो यू कैन इन्जॉय सम हॉट चॉकलेट या हॉट कॉफ़ी, कुछ स्नैक्स खा सकते हैं. खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है. सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि जून इज़ आई मीन हम तो जून में ही गए थे एंड बहुत अच्छा वेदर मिला था बैम्फ में. सो आई रिकमेंड दैट यू मेक अ ट्रिप टू बैम्फ. सो बसफी द सॉन्ग हियर इट इज़ फॉर योर डैड. आई डू होप दैट यू इन्जॉय सेलिब्रेटिंग योर फादर्स बर्थडे टुडे.

Duncan from the movie Fana. That was Chanda Chamke Cham Cham. अच्छा बैम्फ जाएं तो आप जैस्पर भी जा सकते हैं. जैस्पर नेशनल पार्क इज एक्चुअली लार्जर देन बैम्फ एंड जनरली लेस क्राउडेड. इट्स होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सेसिबल डार्क स्काई प्रिजर्व्स, यू नो, मेकिंग इट एक्सेलेंट फॉर स्टार गेजिंग एंड नॉर्दर्न लाइट्स व्यूइंग. तो अगर आपको स्टार गेजिंग का शौक है या नॉर्दर्न लाइट्स देखने का मन है, देन यू कैन डेफिनेटली गो टू जैस्पर नेशनल पार्क एज वेल. एंड दिस ड्राइव बिटवीन बैम्फ एंड जैस्पर अलॉन्ग द आइस फील्ड्स पार्कवे इज फ्रीक्वेंटली रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल रोड ट्रिप्स.

Well, that was a title track, दिल चाहता है. एंड ये बैम्फ और जैस्पर नेशनल पार्क अगर आपको जाना है तो आई रिकमेंड रेंटिंग अ कार एज दैट गिव्स द बेस्ट एक्सपीरियंस. अब वो रीज़न ये भी है दैट यू कैन कंट्रोल द स्टॉप्स ऑन द आइस फील्ड पार्क वे बिकॉज दैट्स अ वेरी सीनिक रोड राइट. एंड यू सी मैनी व्यू पॉइंट्स विच आर एक्चुअली इनएक्सेसिबल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एंड देन वाइल्ड लाइफ व्यूइंग अगर आपको दिख जाती है देन यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू स्टॉप एंड एडमायर देम मच बेटर इफ़ यू आर इन योर ओन कार राइट. एंड बेस्ट टाइम टू विजिट आई वुड से इज़ जून टू सेप्टेम्बर बिकॉज वेदर बहुत अच्छा है. लेक्स हैव यू नो दे फुली थॉड एंड टर्कोइज एंड बहुत सी एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलती हैं. एंड अगर आप लेट सेप्टेम्बर जाएंगे तो यू विल गेट टू सी सम फॉल कलर्स यू नो लेस क्राउड होगा एंड ग्रेट फोटोग्राफी भी पॉसिबल है. आई फील फोटोग्राफी तो आप जून जुलाई अगस्त सितंबर जब भी जाएंगे बहुत अच्छी होगी. एंड अगर आप विंटर में जाएंगे यू नो दिसंबर टू मार्च देन यू कैन डू सम स्कीइंग एट बैम्फ सनशाइन विलेज या फिर लेक लुइस की जो स्की रिजॉर्ट है वहाँ पर. एंड देन यू गेट टू सी सम फ्रोजन वाटरफॉल्स एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स. जो वो सीनरी है वो अलग ही होती है. नहीं

टेकन फ्रॉम द मूवी बंटी और बबली, दैट वॉज अ चुप चुप की. एंड बैम्प की अगर बात करें, सो आई फील द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्राइव विच यू विल सी मे बी बेटर देन द डेस्टिनेशन. जी हाँ, ये जो 230 किलोमीटर लॉन्ग आइस फील्ड पार्कवे जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, कनेक्ट्स बैम्फ एंड जैस्पर एंड इज फ्रीक्वेंटली रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सीनिक ड्राइव्स बिकॉज इट पासिस ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड टर्कोइज लेक्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली. सो यू विल, योर कैमरा रोल या आपका फ़ोन की मेमोरी विल फुल हो जाएगी, लेकिन दिल नहीं भरेगा बिकॉज इतनी खूबसूरत ये जगह है. आई हाईली रिकमेंड कि अभी समर ब्रेक है, मेक अ प्लान. 3-4 दिन भी अगर आप निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो टू बैम्फ नेशनल पार्क. एंड टाइम हो तो आप जैस्पर नेशनल पार्क ड्राइव करके जाएं, नहीं तो उस पार्कवे पर ही आप आधे रास्ते जाके भी लौट के आएंगे तो भी यू गेट लॉट ऑफ सीनिक स्पॉट्स एंड हाइक्स टू enjoy. So well, it's always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say bye-bye, but aap kahin jaiyega nahi. Do stay tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio, as yahan hamare shows aapko entertain karte rahenge. Coming up next is Neelam. Main milungi aapko kal subah 10 baje in Just Chill, jahan karenge hum, as the name suggests, Just Chill. Well, tab tak ke liye, haste rahiye, muskurate rahiye, apna aur apno ka khyal rakhiyega. This is Madhulika signing off.

दिस इज केजीएम 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पे आप हैं मेरे यानी कि नीलम के साथ, और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ दोस्तों, आपका और हमारा साथ होता है हर शनिवार की दोपहर 12 से 3 के बीच में, जहां आज 2 बजे तक प्रस्तुत करूंगी आपके लिए बॉलीवुड के कुछ थीम बेस्ड गाने, एंड राइट आफ्टर दैट 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी की कुछ बातें इन द शो कम्युनिटी राउंड अप। सुना आपने मधुलिका को टिल 12 और आपका और हमारा साथ एज आई सेड टिल 3 PM, और कल भी हमारी म्यूजिकल मुलाकातें होती है आप ही के साथ 12 से 2 के बीच में। आज का जो कार्यक्रम है एक डायरेक्टर के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनका जन्मदिन हम मनाएंगे। अक्सर हम एक्टर एक्ट्रेसेस की बातें करते हैं, सिंगर्स की बातें करते हैं, लेकिन इट्स वेरी रेयर दैट वी रिमेंबर द डायरेक्टर्स, राइट? क्योंकि मैं मानती हूँ कि फिल्म की अगर डायरेक्शन अच्छी हो, फिल्म की कहानी अच्छी हो, तो कोई भी फिल्म, जहाँ छोटा बजट हो या बड़ा, फिल्म बिल्कुल लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो कैसे ही डायरेक्टर है जिनके जन्मदिन को हम मनाएंगे और उनके कुछ करेंगे बातें टिल 2 PM ऑन 104.9 FM। और अगर आप जानते हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, मुझे बिल्कुल बताइएगा 9722355555।

बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे ढेर सारे कॉल्स। और मैं ये मानती थी, मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी कुछ कठिन बातें हो गई। शायद मैंने पूछा कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, और मुझे इतने सारे कॉल्स आ गए, सभी ने मुझे सही जवाब दिया। जी बिल्कुल, इम्तियाज़ अली साहब की करने जा रहे हैं हम आज बातें। उनका जन्मदिन आज नहीं है, 16th of June है, लेकिन चूंकि हमारी और आपकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स में होती है, और सैटरडे खास कर सैटरडे आपके लिए जो सेगमेंट होता है, आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ बॉलीवुड के कुछ थीम बेस्ड गाने, तो हमने सोचा कि चलिए आज क्यों ना हम उनका जन्मदिन मना ले आप ही के साथ, और कुछ करेंगे उनकी फिल्मों से बातें, कुछ उनकी फिल्मों के गाने सुनेंगे, और कुछ होंगे आपके लिए सवाल। कुछ फिल्म ऐसी होती है जो सिर्फ हम देखते नहीं, लेकिन हमारे दिल के कहीं ना कहीं किसी कोने में हमेशा बस जाती है, राइट। मैं मानती हूँ इम्तियाज़ अली साहब की जो फिल्म होती है वो भी कुछ ऐसी ही होती है, और आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं उस फिल्मकार का। अक्सर हम एक्टर्स की बातें करते हैं, एक्ट्रेसेस की करते हैं, सिंगर्स की बहुत सारी बातें करते हैं, बट इट इज़ वेरी रेयर दैट वी रिमेंबर द डायरेक्टर। तो आज हम कर रहे हैं डायरेक्टर को याद, इम्तियाज़ अली साहब। नाउ इम्तियाज़ अली जी इज़ जस्ट नॉट अ डायरेक्टर, उनकी जो हम फिल्मों की बातें करेंगे वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टर भी है, वो कुछ फिल्मों में उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है, तो ऐसे भी कुछ फिल्म्स की बातें करेंगे जहाँ पर वो डायरेक्टर भी है एंड ही इज़ अ राइटर एज वेल। ऐसी बहुत सारी बातें, गाने आप ही की खिदमत में रहेंगे आपके साथ टिल 2 PM। सुनेंगे ये फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, आहिस्ता आहिस्ता, जी हाँ, जिसमें अभय देओल थे और उनके साथ सोहा अली थी। इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था और उन्होंने खुद उसकी कहानी भी लिखी थी। 9722355555, मैं हूँ नीलम आप ही के साथ।

जी, बातें हो रही है आज के शो में, हम बातें कर रहे हैं और जन्मदिन मना रहे हैं उस जादूगर का जिन्होंने उनकी फिल्मों से हमें सफरनामा सिखाया। जी हाँ, ऐसे बहुत सारी हम करते रहेंगे बातें। इम्तियाज़ अली जी का जन्मदिन मना रहे हैं जो है 16th of June, और उनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं बातें होती है सफ़र की, प्यार की, खुद को ढूंढने की, और यही बातें हम भी आपसे करते रहेंगे। और उनकी जितनी भी फिल्म्स है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वहाँ उन्होंने कहानी लिखी हो या डायरेक्ट की हो फिल्म, वो सारी फिल्मों की करेंगे बातें, और वो सारी फिल्मों से हम आपको गाने भी सुनवाएंगे ऑन 104.9 FM। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से आपने सुना ये गीत जो उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। जी हाँ, इम्तियाज़ अली साहब की मैं कर रही हूँ बातें। थिएटर दिल्ली में उन्होंने शुरुआत कर दी थी। इम्तियाज़ ने फिल्मों से आने से पहले ही, उनकी जो कॉलेज का नाम है हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय था, और वहाँ पे उन्होंने एक थिएटर की स्थापना की थी जिसका नाम था इब्तिदा थिएटर की सोसाइटी, बिकॉज ही वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन ड्रामा, ड्रामा मेकिंग, कहानी लिखने के लिए, डायरेक्शन के लिए। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने जो कॉलेज के दिनों थे उन्हें से ही शुरुआत कर दी थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने टीवी से अपने करियर की शुरुआत कर ली। हमने अक्सर ये सोचते हैं हम कि टीवी में लोग आते नहीं, पहले ही फिल्मों में, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो होती है पहले छोटे पर्दे पर होती है, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे मूव ऑन, राइट। तो टीवी पर उन्होंने कुछ फिल्म्स नहीं लेकिन कुछ टीवी सीरीज बनाए थे, कुछ ड्रामास बनाए थे, जैसे कि इम्तिहान, और एक और बहुत ही पॉपुलर शो था जिसका नाम था कुरुक्षेत्र। ऐसे बहुत सारी हम आपके साथ बातें करते रहेंगे और कुछ हम गाने भी सुनवाते रहेंगे। आफ्टर द ब्रेक कुछ सवाल भी होंगे। क्या होंगे सवाल, क्या होगी बातें, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। सुनते रहिए आपके साथ ऑन 104.9 FM।

0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
1: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
2: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
3: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
4: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
5: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
7: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
9: भूख लगी जोरों की भूख लगी
10: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
13: वेलकम बैक, दिस इज KZMP 104.9 FM फनी शहरी रुपए. मैं हूं नीला वाफ के साथ. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम, प्यार भरा स्वागत. आज का हमारा जो शो है समर्पित है बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक और लेखक जिनका नाम है इम्तियाज अली जी. जी हाँ, जन्मदिन है उनका 3 दिनों के बाद, लेकिन मना रहे हम आज यहाँ टिल 2 PM. इस आने वाले कुछ पलों में हम बातें करेंगे उनकी फिल्मों की, उनकी सोच, उनके कुछ दिलचस्प किस्से और कुछ ऐसे यादगार गीत उन्हीं की फिल्मों से. और कुछ बातें आपसे भी होगी, कुछ आपकी भी राय पूछेंगे, वही आपसे भी कुछ सवालात होंगे. लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उमर ख्वाजा जी का, जी हाँ, फॉर दिस सेगमेंट. और उनका नंबर है 4693505046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com. कभी कभार ये हो जाती है कि जब whenever we have to deal with insurance companies after any accident, we don't want to deal with those guys, right? We are like, अरे यार हमारी गाड़ी का देखे, हमारी तबीयत का देखे, ये देखे, वो देखे, कितने सारे मसले हो जाते हैं. लेकिन आपके पास है एक नाम जो आपके सारे मसले बिल्कुल हल कर सकते हैं, दैट इज उमर ख्वाजा. यू डोंट पे अंटिल यू विन. वंस अगेन, दैट इज उमर ख्वाजा. और उनके फ्री कंसल्टेशन के लिए नंबर है 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com. तो जैसे कि उन्होंने कहा, आज बातें हो रही है आप सभी के साथ इम्तियाज अली जी की, फिल्मों की कुछ बातें करूंगी. और चलिए एक या दो गाने सुन लेते हैं, और उसके बाद पहला होगा सवाल आपके लिए. ये जो फिल्म है उसका नाम है अमर सिंह चमकीला. इस फिल्म के लेखक भी वो थे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वो थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे इम्तियाज अली.

अमर सिंह चमकीला से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत। टीवी के सीरियल्स, टीवी ड्रामा से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जहाँ पे वो कुछ सीरियल्स उन्होंने कुछ लिखी भी थी एंड ही यूज्ड टू डायरेक्ट दैट एज वेल। चलिए एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद होगा पहला सवाल इस सेगमेंट में 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

तमाशा फिल्म से सुना आपने बहुत ही खूबसूरत गीत अलका याग्निक और उनके साथ थे अरिजीत सिंह जी। बातें हो रही है आज इम्तियाज अली जी की, जी हाँ, जिनका जन्मदिन मना रहे हैं हम यहाँ पे 104.9 FM। सो बिफोर आई गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन, एक खास बर्थडे डेडिकेशन है सफी जी के पापा का। जी हाँ सफी, आपकी तरफ से आपके पापा के लिए बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां, हम सब की तरफ से भी, फनेशा रेडियो की तरफ से भी, 104.9 FM फन एशिया रेडियो आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ। इम्तियाज अली जी की फिल्मों की कर रही हूँ बातें, और हर डायरेक्टर का अपना अलग फ्लेवर होता है, राइट? किसी भी राइटर का अलग फ्लेवर होता है, किसी भी एक्टर का अलग फ्लेवर होता है, सो वैसे ही भी डायरेक्टर का अलग, उनकी जो फिल्म्स होती है उनकी अलग कुछ बातें होती है। जब हम उनकी कोई भी फिल्म देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे दिल को छू जाती है, लगता है कि हाँ ये इम्तियाज अली जी की फिल्म है, राइट? जैसे कि हर डायरेक्टर की अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी सिग्नेचर होती है। तो मेरा सवाल है आप सभी से ये कि आपके हिसाब से इम्तियाज अली जी की जब आप फिल्म देखते हैं तो सबसे पहली बात या मेन एलिमेंट क्या है जो आप नोटिस करते हैं या महसूस करते हैं, आपको लगता है कि ये बात इम्तियाज अली जी की फिल्मों में अक्सर होती है? तो ये है सवाल आपके लिए कि सबसे पहली बात आप क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं उस फिल्मों में, कि जब आपको लगता है कि नहीं ये बात अक्सर हर फिल्म में होती है, उनकी यही फ्लेवर होती है, तो बताएंगे मुझे आप ये 9722355555। चाहे आप तमाशा की बात कर ले या हाईवे की बात कर ले एंड एंड सो मैनी, जब हैरी मेट सज्जल, जब वी मेट, बहुत सारी उनकी फिल्म्स हैं, तो ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो आपको देखने के बाद लगता है कि ये इम्तियाज अली जी की सबसे अलग बात है, उनकी फिल्मों में अक्सर कहीं ना कहीं ये बात होती है। एंड वंस अगेन द नंबर इज 9722355555। आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ।

0: सवाल पूछ रही हूँ मैं इम्तियाज अली जी की फिल्मों की फ्लेवर की एंड फनीश आर यू लाइव ऑन एयर। हेलो फनीश आर यू लाइव ऑन एयर।
1: हेलो
0: रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दीजिएगा।
1: जी, आवाज आ रही है आपको?
0: जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बताइए क्या है आपका जवाब।
1: एक्चुअली मुझे लगता है उनकी जो मूवीज होती हैं वो टॉपिक ऐसे पिक करते हैं जो हमारी सोसाइटी में पसंद नहीं किए जाते, लेकिन
0: अच्छा
1: फिर भी मतलब उस पे टॉपिक पे बात नहीं होती थी,
0: ओके
1: लेकिन वो बहुत न्यू टॉपिक पिक करते हैं, जैसे कॉकटेल हो गया या हाईवे हो गया,
0: राइट राइट राइट
1: या
0: राइट राइट
1: जैसे जब भी मेट भी नॉर्मली ऐसी जो जैसे गीत को दिखाया देता, तो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में ऐसी बोल्ड लड़कियों को नहीं
0: नहीं
1: पसंद किया
0: दिखाया जाता।
1: जाता
0: ट्रू ट्रू ट्रू
1: जी। एंड वो
0: सही
1: फिर आपको वो तैयार जाता है कि ये मतलब अच्छी लड़की नहीं है, सही नहीं है। तो
0: जी
1: ऐसे टॉपिक्स आई थिंक के वो ऐसे टॉपिक्स पिक करते हैं जो कि मतलब थोड़े डिफरेंट होते हैं,
0: डिफरेंट
1: जैसे
0: होते
1: रॉक
0: हैं।
1: स्टार में भी था
0: जी।
1: तो उनका ये थोड़ा डिफरेंशिएट करता है, तो इसके लिए फिर आदमी ज्यादा वो भी होता है कि उसको होता है कि मैं जाके देखूं मूवी क्या है। अब
0: ट्रू
1: ये नहीं कि वो सही है गलत है, वो
0: कुछ
1: मैटर
0: अलग
1: नहीं
0: है
1: करता,
0: या
1: लेकिन
0: सही
1: जी
0: गलत हम
1: मतलब
0: नहीं
1: कुछ
0: डिसाइड
1: अलग
0: करते,
1: जी
0: बट अलग है कुछ अलग। जी बिल्कुल, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन मैम। आपका नाम क्या कहा आपने?
1: जी सबा
0: थैंक यू सबा जी।

0: जब भी मैट से सुना आपने ये गीत तेरा ना होना भी है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने सुना। और मैं सवाल पूछ रही हूँ आप सभी से कि जैसे कि हर डायरेक्टर, हर लेखक, हर कलाकार की अपनी एक स्टाइल होती है, सबकी अलग फिल्म्स होती है, सबकी अलग फ्लेवर होती है। इम्तियाज़ अली जी की जब भी आप फिल्म्स देखते हैं, कोई भी आप फिल्म उठाकर देख लीजिए, तमाशा, जब वी मेट, हाईवे, कॉकटेल एंड सो मैनी डिफरेंट, लव आजकल जी वो भी उनकी है, यू नो, एंड जब हैरी मेट सेजल, सारी फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक या दो बातें अक्सर होती है जो हम उसको कहते हैं उनकी फ्लेवर, उनकी एलिमेंट। तो आप क्या मानते हैं? हमारी एक लिसनर ने हमें कहा कि उनकी बातें कुछ अलग होती है, उनकी जो सोसाइटी के जो कैरेक्टर्स उनके होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, जैसे कि तमाशा के कैरेक्टर्स या कॉकटेल के कैरेक्टर्स या गीत जब भी मेट के कैरेक्टर्स। वैसे भी आपकी राय क्या है, बिल्कुल मैं जानना चाहूँगी कि आप उनकी फिल्मों में क्या ढूंढते हैं। एक ऐसी बात है जो मैं अक्सर उनकी फिल्मों में मैंने अक्सर देखी है ये बातें, लेकिन वो मैं कहूँगी मेरी बात आफ्टर दिस सॉन्ग। आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी बातें हैं जो अक्सर उनकी हर फिल्मों में होती ही है। 9722355555।
1: इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, शहर का ही था मैं शहर का रहा।
2: मैं नूर महल का हूँ ना पिक्चर में, तो ऐसा आ सकता है कि नूर महल का था मैं, नूर महल ऐसा
0: ये जो गीत है एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स की कुछ बातें आ रही है, लेकिन मैं बिल्कुल आपके लिए वो गाना भी ला रही हूँ और उसके बाद आपके कॉल्स भी रही हूँ कि क्या है आपकी राय उनकी फिल्मों के लिए।

0: क्या है उनकी फिल्मों की कुछ कॉमन एलिमेंट्स एंड फन एशिया योर लाइव ऑन एयर। हेलो
1: हाय नवनीता जी.
0: नीलम, नीलम
1: ओ सॉरी, हाय नीलम द्विवेदी, माय बैड, सॉरी सॉरी.
0: कोई बात नहीं। देखिए, किसी लेखक ने कहा है,
1: माय नेम
0: नाम में
1: इज,
0: क्या रखा है, आप सिर्फ काम सुन
1: नहीं मैं नीलम ही
0: लीजिए।
1: बोलने वाला था, पता नहीं अचानक ऐसा
0: अरे
1: नवनीता
0: कोई
1: बोल के
0: बात
1: आ गया
0: नहीं,
1: था.
0: देखिए कोई बात नहीं, काम इज अहम। बात क्या है, काम, मेरा काम देखिए सुनिए, नाम डोंट वरी अबाउट नाम। अच्छा बताइए क्या है आपका जवाब सर।
1: मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वीकेंड सुनता रहता हूँ आपका शो,
0: थैंक यू सर।
1: और आपका यूट्यूब में इंटरव्यू बहुत अच्छा है नीलम जी.
0: ओह थैंक यू जी, दैट आई डू इट फॉर कम्युनिटी
1: और
0: राउंड अप,
1: खुशी
0: हमारी
1: बात
0: जो
1: यह है
0: बीच।
1: कि आप
0: जी
1: बहुत कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं.
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और आपकी इतनी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाम भूल
1: या
0: गए,
1: मैं
0: उसके
1: पहला
0: बदले
1: बार
0: में आपने कुछ
1: आपको
0: और था।
1: भद्रासलम टेंपल जो किए थे ना, इधर आ रहा था, वो गुरु जी के साथ जो इंटरव्यू हुआ वो देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे.
0: विच इंटरव्यू वॉज दैट सर?
1: शायद वो तेलुगु में,
0: ओ यस
1: इंग्लिश में
0: यस
1: था,
0: यस यस, आई
1: भद्राचलम
0: रिमेम्बर दैट,
1: टेंपल,
0: यस यस
1: श्री राम
0: जी जी श्री
1: भद्राचलम
0: राम
1: टेंपल.
0: मंदिर के लिए। जी जी सर, थैंक यू, आई
1: अच्छा
0: अप्रिशिएट योर कॉल। तो बताइए क्या है आपकी राय उनकी फिल्मों के लिए, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन?
1: मतलब मुझे सब कुछ रहना है, जैसे कि कमर्शियल जॉनरा में एंटरटेनमेंट चाहिए, सॉन्ग्स चाहिए, अच्छा एक्शन चाहिए,
0: ओके
1: और सबसे ज्यादा स्क्रीन पे चाहिए. तो
0: ओके
1: मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है हर वक्त. अगर
0: ओके
1: कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ऑफकोर्स हमको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि
0: जी जी जी जी बिल्कुल
1: बहुत रेयरली आता है
0: राइट
1: ऐसा.
0: राइट। उनकी एक ऐसी बात है बहुत अहम जो अब तक किसी भी मुझे लिसनर ने नहीं बताई, बट आप सुनते रहिए 2 बजे तक, मैं आपको जवाब दूंगी कि व्हाट आई थिंक, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन ऑल हिज फिल्म्स, एंड आई थिंक ही हैज एडमिटेड दैट इन मेनी मेनी ऑफ हिज इंटरव्यूज, लेकिन मैं बताऊंगी आपको इस गाने के बाद एंड आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल।

0: सफर का ही हूँ मैं, सफर का रहा मैं। कुछ कमर्शियल ब्रेक के बाद मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। माई टाइम इक्विटी, उनको बिल्कुल कॉल कीजिएगा, 4697021272 इज द नंबर, एंड mytimeequity.com इज द वेबसाइट। सीपीएस सुधीर भाई जी जो आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आपकी मदद कर सकते हैं, रियल एस्टेट एंड ऑल्सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। वंस अगेन दैट इज माई टाइम इक्विटी। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ, इस म्यूजिकल मुलाकातों के साथ रहती हूँ हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM एंड ऑन संडेज टिल 2 PM। इम्तियाज अली जी के गाने सुनेंगे और उनकी कुछ फिल्मों की बातें कर रही हूँ मैं, उसके साथ मेरी जो राय है मेरी ऑब्जर्वेशन कहूंगी, लेकिन आपके कॉल्स भी।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन। ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर क्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio.

आजकल से सुना आपने गीत। अगर आपने अभी भी रेडियो ट्यून इन किया है, वेल बातें कर रही हूँ मैं इम्तियाज अली जी की फिल्मों के, क्योंकि उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं आज, विच इज़ ऑन 16th of June। कभी कभार हमने बहुत सारे कलाकारों को याद किया, बहुत सारे सिंगर्स को, कंपोजर्स को, लेकिन इट्स वेरी रेयर कि हम डायरेक्टर्स को याद करते। तो आज मैंने सोचा कि चलिए इस ऐसे डायरेक्टर को याद कर लेते जिन्होंने बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्म्स हमें दी है इन बॉलीवुड। बातें चलती रहेगी, लेकिन मेरा सवाल था आप सभी के लिए कि जैसे कि आप जानते हैं कि हर कलाकार की अपनी एक अलग फ्लेवर होती है, हर डायरेक्टर की अपनी अलग एक फ्लेवर होती है, तो ऐसा कौन सी बात है, ऐसी कौन सा एलिमेंट है जो उनकी फिल्मों में अक्सर आप सबसे पहली नज़र में आती है, वो बातें, उनकी फिल्म उसके बिना अधूरी लगती है आपको। बहुत सारे कॉल्स आए, ऑफ एयर भी मैंने बहुत सारे कॉल्स लिए, बहुत सारे लिसनर्स ने मुझे उनकी रोमांटिक साइड के लिए कहा कि उनकी कहानी में कहीं ना कहीं प्यार जो होता है, दैट इज़ लाइक रूहानी कुछ प्यार होता है, इट्स अ वेरी सोलफुल लव। यस एब्सोल्युटली, जैसे कि अगर आपको याद है कि जो रॉक की बात चल रही है, अगर प्यार की बात चल रही है, रूहानी बातें चल रही है, तो रॉकस्टार भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें प्यार अधूरा प्यार था। जब वी मेट में भी कुछ ऐसी ही बात थी, जब हैरी मेट सजल में भी। लेकिन उसके अलावा भी एक और बात है जो हर फिल्म में नज़र आती है। आप बिल्कुल, आपकी राय लेना अभी भी मैं चाहूँगी। 9722355555, वंस अगेन दैट इज़ 9722355555। इम्तियाज़ अली जी की फिल्मों की फ्लेवर कौन सी सबसे अहम बात होती है, वंस अगेन ऑन 104.9 FM।

0: क्या बात है इम्तियाज अली साहब, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं। बहुत बहुत बढ़िया प्यार की बातें। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर। रेडियो की
1: हेलो
0: आवाज प्लीज कम कर दीजिएगा।
1: जी,
0: बताइए क्या है आपकी राय।
1: हाँ, मेरी राय है, मेरा नाम है शशि सिंह।
0: जी, बताइए।
1: उनकी फिल्मों में जो हमारी सोसाइटी में कुछ भी एक नया मूवमेंट चेंज होता है, जो कि स्लोली इंडिया में हो रहा है, वो उनकी फिल्मों में नजर आता है,
0: एक बदलाव नजर आता है। यू मीन टू से कि उनके
1: मेरा
0: जो
1: ओपिनियन
0: जो
1: है,
0: कल्चर शिफ्ट हो रही है हमारी इंडिया की
1: जी,
0: बातें है, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो। एब्सोल्युटली, तो वो भी तो बहुत एक अहम बात है उनकी फिल्मों में कि कैसे हर
1: हाँ,
0: कैरेक्टर एक अलग बदलाव में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
1: और बड़े बड़े लोगों को वो हमारी सोसाइटी में दैट ही इज ट्राइंग टू प्रेजेंट कि आप थोड़ा एक्सेप्ट करिए, चेंज हो रहा है
0: थोड़ा
1: इंडिया
0: सा,
1: में।
0: थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए जी। एंड देयर इज नो चॉइस, राइट? इफ यू डोंट इवॉल्व विद द टाइम, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि इफ यू डोंट इवॉल्व विद द टाइम, जैसे कि अगर हमारे बुजुर्ग है, दादी है या नानी है, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज वी आर, तो वो अक्सर उनके लिए बहुत सारी शिकायत रहेगी। सिमिलरली फॉर अस, राइट? वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट आवर किड्स आर गोइंग टू डू।
1: इट्स हार्ड फॉर बोथ
0: जनरेशंस। यस यस, एब्सोल्युटली।
1: ओल्डर्स के लिए भी हार्ड है, जो यंग जनरेशन है
0: उसके लिए भी हार्ड है,
1: उसके लिए भी हार्ड है, बिकॉज दे आर सीइंग ऑल दोस थिंग्स।
0: ट्रू ट्रू, वेरी नाइस।
1: उन्होंने पहले कोई
0: जी, वेरी वेल।
1: मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई ऑब्जर्व ऑल दोस थिंग्स उनकी मूवीज में।
0: वेरी गुड, थैंक यू मैम।

0: ले जाए जाने कहाँ। इस गाने के बाद मैं अपनी राय देने वाली थी, लेकिन फिलहाल हम लेंगे हमारे एक लिस्नर की राय। एंड फनीश, योर लाइव ऑन एयर।
1: जी, वो इम्तियाज के मूवीज में एक मैंने देखा है कि वो लड़का लड़की को मिलने नहीं देता,
0: नहीं
1: हमेशा तड़प तड़प तड़प
0: तड़प
1: तड़प
0: के रहते हैं। उनके पूछना पड़ेगा उन्हें पर्सनली कि आपके लिए कि जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था कि आप अक्सर ये सोचते हैं कि प्यार अधूरा ही अच्छा लगता है, प्यार को पूरा नहीं करना
1: चाहिए। पूछने का बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि उसका कुछ है।
0: बिल्कुल, आई होप कि जी सर।
1: दूसरा दूसरा जो आपका अर्लियर कॉलर जो बोल रही थी, बिल्कुल सही है कि वो हमेशा जो सोशल जो चेंज होता है
0: जी जी जी,
1: वो फौरी वो चेंज को इंडिया के अंदर वो दिखाना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि भाई देखो ये हो रहा है।
0: जी जी,
1: और मोस्टली उनके मूवीज की स्टोरीज जो है वो अपर क्लास मिडिल क्लास के सोसाइटी की ही होती है।
0: ट्रू ट्रू,
1: नीचे की।
0: जी जी, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। आई अप्रिशिएट योर टाइम, आई अप्रिशिएट योर कॉल एज वेल, थैंक यू सो मच सर। ले जाए मुझे चाहे कहाँ हवाएं। सो अगर मैं इम्तियाज अली जी की फिल्म्स की मैं बात करूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन, एंड ऑफकोर्स आई एम स्टिल टेकिंग ऑल योर कॉल्स, आप मेरे अलावा भी कुछ और भी राय लूँगी मैं, उनकी कोई भी आप फिल्म देख लीजिए, अर्लियर टाइम्स की अगर फिल्म कर देख लीजिए, जब भी मैट की मैं बात कर लूँ, लव आजकल, रॉक स्टार हो, हाईवे है, तमाशा, जब हैरी मेट सेजल, हर फिल्म में उनकी कहानी सफ़रनामा होती है। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। आई थिंक ही लव्स जर्नी, और इसीलिए कहीं ना कहीं इवन हाईवे की अगर आप बात कर ले तो ऑफकोर्स इट वॉज अबाउट जर्नी, जब भी मेट में भी एक जर्नी थी, ट्रेन की जर्नी थी, लव आजकल में भी बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जहाँ पर कुछ ना कहीं सफ़र दिखाया गया था, जब हैरी मेट सेजल द होल फिल्म वॉज अबाउट दैट, राइट, दे वर ट्रैवलिंग टुगेदर। सो मैं ये मानती हूँ कि सफ़रनामा उनकी फिल्म, ऑफकोर्स दिल की बातें होती है, सोसाइटी की बातें होती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उनकी बातें होती है वो सफ़र के लिए होती है, और उनके जो किरदार होते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढने के लिए वो सफ़र पे निकले होते हैं। एंड आई रिमेंबर वॉचिंग वन ऑफ हिज इंटरव्यूज जहाँ पर खुद उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं इम्तियाज़ अली जी की बात करी हूँ कि ही लव्स ट्रैवलिंग सो मच, और उन्होंने अक्सर कहा था कि मैं सुकून ढूंढता हूँ ट्रैवलिंग में, अक्सर लोग थक जाते हैं, बट फॉर मी ट्रैवलिंग इज़ अ फन एंड ऑल्सो इट इज़ समथिंग टू कनेक्ट विथ माई सेल्फ। और ये अक्सर आप उनकी कोई भी फिल्म, यू नो, यू कैन गो बैक टू 2007 या उनकी लेटेस्ट फिल्म देख लीजिए, वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग की बातें मिलेगी, एक सफ़रनामा होगा उनकी ज़िंदगी की तरह, उनकी फिल्मों में भी होती है सफ़र की बातें। आपकी भी राय लूँगी बिल्कुल 104.9 FM फनीशा रेडियो पे, मैं हूँ नीलम आपके साथ रहूँगी टिल 3 PM।

कभी कभार हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खुद को भूल जाते हैं ना। इतनी सारी बातें होती है, इतनी सारी हमारी रूटीन्स होते हैं, हमारी टू डू लिस्ट होते हैं। और ऐसी फिल्म जब हम देखते हैं, इम्तियाज अली जी की मैं बात कर रही हूँ, उनकी फिल्म देखकर आपको खुद को रुककर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बात सुन लें। उनकी फिल्म बहुत ही रूहानी होती है। उनकी जितनी भी फिल्म्स देखे आप, जितने भी किरदार होते हैं, लव आजकल की हो, बातें हैवे की बात हो, जब हैरी मेट सेजल हो, या फिर गीत की कहानी हो, या आदित्य की कहानी, जब भी मेट की मैं बात कर रही हूँ, हर फिल्म में उनकी जो किरदार होते वो बहुत ही रूहानी होते। लव यानी कि प्यार की बातें होती है, ब्रेकअप की भी बातें होती है, खुद की तलाश, जैसे कि तमाशा फिल्म में कैरेक्टर जो है, किरदार जो है, खुद को ढूंढता रहता है कि आखिर उसे ज़िंदगी में चाहिए क्या। ये सारी बातें इम्तियाज़ अली जी की फिल्मों में अक्सर नज़र आती है, एंड दैट इज़ खुद की तलाश। और जो संगीत होता है उनका, उनकी फिल्मों की मैं बात कर रही हूँ, वो संगीत भी कहीं ना कहीं इतना रूहानी होता है कि सालों बीत जाने के बाद भी वो गाने हम अक्सर याद करते हैं, गुनगुनाते हैं और गाते भी हैं और आपको सुनवाते भी हैं ऑन 104.9 FM।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
5: अरे कहना क्या चाहते हो?
6: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ primarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
7: 2026 में आप राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
13: And welcome back. This is KZMP 104.9 FM Fun Asia Radio पे मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ every weekend on 104.9 till 3 PM Saturdays, Sundays 2 बजे तक. टेक्सास प्राइमरी केयर का शुक्रिया अदा करते चले फॉर 13 ईयर्स. जी हाँ, 13 सालों से आपकी सेवा में, हमारी कम्युनिटी की सेवा में है. नाउ दे आर ग्रोइंग विथ अ न्यू ब्रांड नेम और उनका नाम होगा इन फ्रिस्को. जी हाँ, इट इज सेकंड लोकेशन इन फ्रिस्को जो है लनक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, जहाँ पर सातों दिन आप जा सकते हैं फ्रॉम 8 AM टिल 8 PM. वंस अगेन, सातों दिन. जी हाँ, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि यार फ्राइडे नहीं जाना है या मंडे नहीं जाना, ऑफिस में काम बहुत है, मीटिंग्स बहुत है. कोई बात नहीं, सैटरडे संडे चले जाइए, क्योंकि इट इज ओपन 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM टिल 8 PM. वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. वंस अगेन, इट इज प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्ट एज वेल एज सिटी स्कैन्स एंड कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एज वेल. एंड दैट इज टेक्सास प्राइमरी केयर का सेकेंड लोकेशन. बातें अगर आपने अभी भी ट्यून इन की है, किया है हमारे रेडियो को, अपने बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने मिस कर दिए, कोई बात नहीं. आज बातें हो रही है इम्तियाज अली जी की, जिंदगी की, उनकी फिल्मों की, क्योंकि उनका जन्मदिन मना रहे हैं हम यहाँ पर ऑन 104.9 FM. प्यार की बातें हो, ब्रेकअप की बातें हो, खुद की तलाश की बातें हो या सफरनामा हो, वो है उनकी फिल्म्स. रॉकस्टार के आप जॉर्डन को देख लीजिए या तमाशा के देख लीजिए कैरेक्टर को, कहीं ना कहीं लगता है कि उनके कैरेक्टर्स खुद को ढूंढते हैं. तो बस आज उनके कुछ खास फिल्मों से हमने बहुत सारी बातें देखी, सुनी, और चलिए अब अगली फिल्म कुछ उनकी बातें सुन लेते हैं, उनके गाने सुन लेते हैं. एंड दैट इज जब वी मेट ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio. इस गाने के बाद पूछूंगी एक और सवाल उन्हीं से.

उस्ताद रशीद खान की रूहानी आवाज़ में सुना आपने बरसेगा सावन आओगे जब तुम पिया, बहुत ही खूबसूरत बात, जब भी मेट से। इम्तियाज़ अली जी का मानना है कि वो आज भी, एंड ही लव्स ट्रैवलिंग एज आई वाज सेइंग इन अर्लियर प्रीवियस सेगमेंट, कि वो और जब भी वो ट्रैवलिंग करते हैं, जब भी वो सफ़र करते हैं, किसी भी सिक्योरिटी बिना, तामझाम के बिना, अकेले लोकल ट्रेन्स में, बसेस में, छोटे छोटे कस्बों में वो सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो असली कहानियाँ हैं हमारी ज़िंदगी की, वो ऐसे ही हमें सड़क पर, हमारे ट्रैवलिंग में, हमारे सफ़र में मिल जाती है। तो चलिए, एक और सवाल मेरे जहन में आया है, लेकिन वो मैं पूछूंगी इस गाने के बाद ऑन 104.9 FM।

0: इम्तियाज़ अली जी की फिल्मों से सुन रहे हैं आप कुछ गाने। उनकी फिल्मों के संवाद बहुत खूबसूरत होते हैं क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स के गाने नहीं लेकिन उन्होंने संवाद, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और कहानी भी वो खुद लिखते। ऑन दैट नोट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके जहन में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं लेकिन मैं ज़्यादा आपके जहन को तकलीफ़ नहीं दूंगी, मैं सिर्फ एक या दो नाम पूछना चाहूँगी कि जैसे इम्तियाज़ अली जैसे आई सेड कि एज अ डायरेक्टर वो खुद अपनी फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, कहानी भी लिखते हैं, स्क्रीन प्ले भी उनकी होती है, तो आप मुझे ऐसे एक या दो और डायरेक्टर्स बताइए जो खुद अपनी फिल्म्स की कहानी भी लिखते हैं और उन्होंने खुद अपने फिल्म के संवाद भी लिखे हो। 9722355555 ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, देखिए मैं इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं पूछ रही हूँ, एक नाम और मुझे बता दीजिए अपार्ट फ्रॉम इम्तियाज़ अली जो खुद एक डायरेक्टर भी है एंड ऑल्सो ही राइट स्क्रिप्ट फॉर हिज ओन फिल्म। 9722355555 आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ ऑन 104.9 एफएम एंड फन एशिया। रेडियो की आवाज एकदम कम प्लीज।
1: आई एम सॉरी अबाउट दैट।
0: यस सर, बताइए क्या है आपका जवाब।
1: मेरा है ऑल टाइम फेवरेट एंड माय आइडल गुलजार साहब।
0: अरे सर, गुलजार साहब की क्या आपने बात छेड़ दी। एंड आरडी बर्मन जी उनके साथ जो गाने लिख दे वो फिल्म क्या बन जाती थी।
1: आंधी एक अनमोल रत्न।
0: अरे सच ए डेडली कॉम्बिनेशन, गुलजार साहब, आरडी साहब एंड आशा जी।
1: I had the opportunity to meet Gulzar Saab in Dallas.
0: Oh, you did? 2-3 years back. Wonderful, yeah, wonderful, wonderful.
1: The location was gathering tha ek ghazal ka. Wo aaye the. I think 3 years back. But
0: very nice. Sir. Very, next time, if you happen to meet him, please let me know. I would come and talk to him.
1: Oh, definitely. But three saal pehle tha. Unhone kaha ki this will be my last trip to US. I don't know. Maybe health reasons.
0: Right. So yeah, it's a deadly combination. Ijazat film, if you remember, Rekha and Nasiruddin Shah. वो खुद उन्होंने लिखी थी।
1: Oh, क्या इजाजत? Yes. Oh my God.
0: इजाजत के dialogues भी उन्होंने लिखे थे और गाने थे आरडी बर्मन साहब के थे।
1: और वो मेरा सामान,
0: मेरा कुछ सामान मुझे लौटा।
1: Oh my God.
0: आशा जी की आवाज में। Very good sir. Thank you जी. And Phanish, are you live on air? रेडियो की आवाज कम प्लीज। जी बताइए क्या है आपका जवाब।
2: संजय लीला बंसाली भी करते मेरे।
0: यस यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उन्होंने एक्चुअली, यू आर सो राइट, बहुत सारी फिल्म्स उनकी जो है इंक्लूडिंग पद्मावत हो या फिर ये रामलीला की बात हो, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स की कहानियां खुद उन्होंने लिखी है। स्क्रीन प्ले, आई वुडंट से कहानियां बट स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स।
2: मेरे ख्याल से राम गोपाल वर्मा का भी ऐसे एक दो है लेकिन संजय लीला बंसाली आजकल तो म्यूजिक भी देते हैं, सो दैट्स द अदर थिंग दैट आई
0: रिमेंबर। संजय लीला बंसाली इज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर एंड अ म्यूजिक कंपोजर। लाइक आई हैव नेवर सीन दैट इन एनी डायरेक्टर, राइट? इट्स लाइक अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। एंड फनीश, आई यू लाइव ऑन एयर।
3: Yeah, I think Kader Khan, I am not sure he directed any movie.
0: No sir, no. Kader Khan, you are very right. He used to write scripts and unke jo dialogues hote the. If you remember 80s ki movies ke sare dialogues, Govinda ke saath jitne bhi films unhone ki hai, he used to be the dialogue writer and an actor, but never, I don't think he ever directed any film as such.
3: Yeah, but he wrote stories as well.
0: Yes, he did write stories, script play and also that. Thank you sir. एंड लास्ट कॉलर बताइए क्या है आपका जवाब।
4: नीलम, इट्स विशाल भारद्वाज।
0: इट इज विशाल भारद्वाज जी बिल्कुल। वो इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर उनके जितने भी शेक्सपियर के ड्रामास होते हैं उनकी कहानी को एडेप्ट करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, उनके किरदार खुद डेवलप करते हैं एंड ही राइट्स द स्क्रिप्ट एज वेल एज डायरेक्ट्स द फिल्म देन।
4: सो म्यूजिक
0: ऑफ कोर्स, यस, विशाल भारद्वाज इज अ ग्रेट एंड सिंगर एज वेल। इफ यू रिमेम्बर ओमकारा में he was also a singer in one of the song, Suraj ki jo baat hai, I think I remember the word, kahin dhoop pa ya koi
4: chha. Kya baat hai, kya baat hai, aapka knowledge to ekdam alag level
0: ka. Thank you sir, it's all God gifted, but yes, so that is a song he sang with Shreya Ghoshal. He wrote that song, also sang it with Shreya Ghoshal. So thank you sir, and main bahut sare calls hai, nahi le paungi, maafi chahti hoon, kuch gaane bhi sun lete hai, kyunki zyada tar hai ye sangeet ki duniya, aap hi ke liye 104.9. FM.
5: मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

जो तुम ना हो तो रहेंगे हम नहीं, क्या बात है। उनके किरदार इतने गहरे होते हैं, हर फिल्म की अगर आप बात कर लीजिए, 2007 से लेकर आज तक की उनकी जितनी भी फिल्म्स हैं, उनके संवाद गहरे होते हैं, उनकी जो फिल्मों का संगीत होता है वो भी इतना ही रूहानी। उनके फिल्मों का संगीत एंड यू नो फॉर दैट मैटर आई वुड से फॉर एवरी डायरेक्टर, कहीं ना कहीं फ्लेवर जो होती है उनमें संगीत की भी फ्लेवर होती है, चाहे संजय लीला भंसाली हो, विशाल भारद्वाज, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो संगीत तो चलिए मैं मानती हूँ कि हर फिल्म का एक अहम बात होती है, लेकिन इम्तियाज़ अली की खास बात यह है कि सफ़रनामा। वो अक्सर मानते हैं कि ज़िंदगी का असली मज़ा है वो मंजिल में नहीं लेकिन सफ़र में है, और इसीलिए उनके जो किरदार होते हैं कहीं ना कहीं वो किरदार भी ऐसे होते हैं कि जो खुद को समझने की कोशिश करते हैं। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिस्कवर विद हिम, दे वॉन्ट टू नो हु दे आर। लाइक तमाशा की अगर आप बात कर लीजिए, रॉक स्टार की बात कर लीजिए, जब वी मैट रिमेंबर दैट कैरेक्टर, गीत का कैरेक्टर, शी वॉज सच अ बबली कैरेक्टर इन द बिगेनिंग, लेकिन इन द एंड शी इज थ्रोन एज अ मच्योर वूमन। सो कहीं ना कहीं उनके पूरी फिल्मों में इट इज़ अबाउट यू नो एवोल्यूशन, इट इज़ अबाउट कि हाउ द कैरेक्टर्स आर गेटिंग इवॉल्व, हाउ द कैरेक्टर्स आर बिंग डेवलप थ्रू आउट द फिल्म, एंड दैट इज़ वेरी रेयर इन एनी डायरेक्टर कि इतनी गहरी होती है उनकी कहानियाँ। और जो बातें गहरी होगी वो आप अक्सर सुनेंगे मेरे साथ, क्योंकि वही गहरी बातें मैं भी करना पसंद करती हूँ एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM।

या रहमान का संगीत एंड हाईवे फिल्म से सुना आपने ये गीत, तो उनके जन्मदिन, इम्तियाज़ अली जी के जन्मदिन पर कुछ उनकी फिल्म्स, उनकी यादों और इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी भी इतने सारे कॉल्स, इतनी सारी बातें, उम्मीद है कि उनकी कहानियों की तरह आज का ये सफ़र भी आपके दिल को छू गया होगा। अक्सर मेरी कोशिश होती है दोस्तों, सैटरडेज़ के शो में बॉलीवुड बेस्ड गाने होते हैं 2 बजे तक, और हर शनिवार की दोपहर कुछ ना कुछ अलग लाने की, कुछ अलग विषय पर बातें होती है बॉलीवुड की। 2 से 3 के बीच में आपके और हमारे बीच में जो बातें होती है वो बातें होती है कम्युनिटी के हवाले से, एंड दैट इज़ कम्युनिटी राउंड अप। संडेज आपके और हमारे साथ जो बातें होती है 12 से 1 के बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ, एंड दैट इज़ अ रीजनल शो, एंड दैट इज़ अ गुजराती रीजनल शो। 1 से 2 के बीच में गाने होते हैं लेकिन गैर फिल्मी गाने, जी हाँ ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत गाने लेकिन फिल्मी गाने नहीं, गैर फिल्मी, कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, वेब सीरीज़, पाकिस्तानी ड्रामा से लेकर हर एक नए अंदाज की बातें आप ही के लिए ऑन एवरी संडे बिटवीन 1 एंड 2। एंड मैं हूँ नीलम, बने रहिए हमारे साथ ऑन फनेशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: वेट, इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: Planning a graduation party, birth recital?

एंड वेलकम बैक. दिस इज KZMP 104.9 FM फनेश्वर रेडियो पे. मैं हूँ नीलम आपके साथ. कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ आप ही के लिए टिल 3 PM, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप. ये कार्यक्रम आपकी सेवा में, हमारी पूरी कम्युनिटी की सेवा में हम प्रस्तुत करते हैं 3 बजे तक. एंड ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी. जी हाँ, आपने सही सुना, अ फ्री प्लेटफॉर्म टू प्रमोट एनी ऑफ योर नॉन प्रॉफिट एंड सोशल एक्टिविटीज एंड ऑल्सो इवेंट्स ड्यूरिंग दिस आवर एवरी सैटरडे. कार्यक्रम के दौरान आप ही की पसंद के कुछ हम गाने प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो पेट्रोटिक गाने हो, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल गाने. आप ही की पसंद के होते हैं गाने. आपके लिए हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी रहते हैं और उसी के साथ जुड़ते हैं हमारे साथ हर शनिवार की दोपहर किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. जैसे कि मैंने कहा, ये कार्यक्रम आपके लिए, आप ही से बनता है, आपकी सहायता से बनता है और आप ही के लिए हम प्रस्तुत करते हैं हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM.

जय काल महाकाल ऑन 104.9 FM वन एशिया रेडियो एंड दिस इज कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट नीलम। हर शनिवार की दोपहर प्रस्तुत करती हूँ आप ही के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। वैष्णव संघ ऑफ डायलस प्रस्तुत करते हैं आपके लिए ऑन 11th ऑफ जुलाई एंड दैट इज बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट। वंस अगेन इट इज बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट ऑन 11th ऑफ जुलाई 22 यार्ड्स डायलस इन ड्यूसविल टेक्सास, दैट इज द वेन्यू बाय वैष्णव संघ ऑफ डायलस। हिंदू रिश्ते दैट इज मैच एंड मिंगल मैट्रिमोनियल मैच इवेंट एंड इट इज हैपनिंग वंस अगेन आपके लिए होती है ये बातें। मैच एंड मिंगल मैट्रिमोनियल मैच मेकिंग इवेंट और इस बार दिस इज हैपनिंग एट स्प्रिंग हिल स्वीट्स बाय मैरियट। यू कैन रजिस्टर एट gujarati.live/match2026। वंस अगेन यू कैन रजिस्टर एट gujarati.live/match2026 एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल विज्ञान गोटेवाल 214-566-2171। हैपनिंग ऑन August 8th एट 1 PM एंड द नंबर टू रीच आउट इज 214-566-2171। August 8th हिंदू रिश्ते मैच एंड मिंगल। श्री यमुना जी गुणगान महोत्सव हैपनिंग इन ऑगस्ट 26, 27, 28 and 29 इन फेयरव्यू टेक्सास बाय वंस अगेन वैष्णव संघ ऑफ डायलस एंड दैट इज 26, 27, 28 and 29 ऑगस्ट इन फेयरव्यू टेक्सास यमुना जी गुणगान महोत्सव। वैष्णव संघ वैष्णव मिलन ऑफ टेक्सास प्रस्तुत करते सीनियर मिलन सोसाइटी एंड इट इज हैपनिंग नेक्स्ट सैटरडे जून 20th फ्रॉम 11 AM टिल 1 PM फॉलोड बाय लंच एंड दिस इज हैपनिंग इन मकीनी जून 20th फ्रॉम 11 AM टिल 1 PM एंड दिस इज बाय वैष्णव मिलन ऑफ टेक्सास एट गोवर्धन नाथ जी मंदिर इन मकीनी। सावन भादो सत्संग हैपनिंग एट श्रीनाथ धाम हवेली इन कॉपल टेक्सास 14th ऑफ जून दैट इज द डेट यहाँ टुमारो एट 11 AM सावन भादो मनोरथ हैपनिंग एट विवायो श्रीनाथ धाम हवेली 14th ऑफ जून दैट इज टुमारो एट 11 AM। एकल विद्यालय की जो है प्रस्तुति एनुअल फंड रेजिंग इवेंट हैपनिंग एंड दिस इज फॉर कथक ऑन द सिल्वर स्क्रीन एंड द डेट इज August 28th एट गार्लैंड ग्रेनविल आर्ट सेंटर दैट इज कथक ऑन द सिल्वर स्क्रीन। दिस इज एनुअल फंड रेजिंग इवेंट बाय एकल विद्यालय। ये सारे इवेंट सारी जानकारी आप ही के साथ बनी रहेगी हर शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में। अगर आप भी आपके इवेंट्स हम तक पहुंचाना चाहे देन डू रीच आउट टू मी neelam@funasia.net। यह है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM।

एकला चालो रे, बहुत ही खूबसूरत ये बात, ये कविता आपने अक्सर सुनी है रविंद्रनाथ टैगोर। श्री रविंद्रनाथ टैगोर की बात ये बार बार अलग अलग आवाज़ में, अलग अलग अंदाज में आपने सुनी। 104.9 FM फनीशा रेडियो, मैं हूँ नीलम आपके साथ है। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, आप ही से बनता है ये कार्यक्रम। अगर आप इंडिविजुअली और इफ़ यू आर ट्राइंग इन एनी वे टू हेल्प द एंटायर कम्युनिटी या एनी फैमिली, एनी मेडिकल इमरजेंसी, किसी स्टूडेंट की आप मदद कर रहे, किसी भी तरह आप आपके प्रचार को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू रीच आउट टू अस टू रेज अवेयरनेस, टू मेक श्योर दैट वी हेल्प यू इन योर कैंपेन। देन प्लीज़ रीच आउट टू अस neelam@phanesia.net, दैट इज़ द ईमेल टू रीच आउट टू मी। हम करेंगे आपकी मदद, क्योंकि ये है कम्युनिटी राउंड अप विथ मी और होस्ट नीलम, ब्रॉट टू यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर, एवरी सैटरडे।

0: कुछ आशा की बातें, कुछ इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल बातें ये गाने सुनते रहेंगे आप हमारे साथ थ्रू आउट द शो टिल 3 PM। और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं टू रिप्रेजेंटेटिव्स टू टॉक अबाउट द अपकमिंग अ वेरी यूनिक कंसेप्ट विच आई हैव नेवर हर्ड इन डैलस बिफोर। जी हाँ, पहली बार ये मैं सुन रही हूँ डैलस फोर्ट वर्थ के लिए। तो ये क्या है कंपटीशन, क्या है ये स्पर्धा, बातें करेंगे इन दोनों रिप्रेजेंटेटिव से राइट हियर ऑन 4.9 FM फनीशा रेडियो। अभिषेक जी एंड चिराग जी, वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर एंड नमस्कार। यू आर लाइव ऑन फनीशा।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार सर। सो टेल अस समथिंग विच इज हैपनिंग ऑन July 28, द वेरी यूनिक कंसेप्ट एज आई सेड आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दैट बिफोर इन डैलस फोर्ट वर्थ सर। सो प्लीज गो अहेड एंड शेयर सम इन्फॉर्मेशन।
1: So this is a Bhagavad Gita Pariksha that we are conducting at DFW Hindu Temple Society, Ekta Mandir, in collaboration with Hindu University of America.
0: Ji.
1: As you mentioned, it's on July 26th at DFW, Ekta Mandir.
0: Wonderful, wonderful. So July 26th, between 10 AM till 4 PM, and this is a Gita Pariksha. Ji haan, Bhagavad Gita Pariksha that is happening, and it is happening at DFW Hindu Temple Society along with Hindu University of America. So tell us something about the concept and the format, that what and how, what to expect during this Pariksha.
1: So everybody as a Hindu or Sanatani would know at least the name Bhagavad Gita.
0: Ji.
1: And we are putting that into a Pariksha.
0: Ji.
1: It's not like a regular Pariksha, but imagine that you are giving this pariksha just to prepare for Bhagavad Gita, to understand Bhagavad Gita and apply. So we have a format, 4 group hai, age group wise, like elementary school age, middle school age, high school age, and above 19.
0: Above 19, yes.
1: Anybody above 19.
0: Right.
1: So for this pariksha, we have also devised a preparatory course at DFW Hindu Temple that is optional. So if you want to appear for the pariksha and also would like to formally learn Bhagavad Gita, you can also join at DFW.
0: Great information. So Chirag bhai, tell us, is there any website that you would like to share with us where we can go ahead and register?
1: Yes. So if you go to dfwhindutemple.org, click on Vidya Vikas School link from the menu.
0: Ji.
1: And there you will find a link to register for Bhagavad Gita Pariksha.
0: Great. So
1: and
0: once
1: also
0: again,
1: for the course.
0: Very nice. So if you know the website of DFW Hindu Temple, just go and log on to him, dfwhindutemple.org, and you will see the website is having this event as well, jahan par aap jaakar register kar sakte hai, happening on July 26th at DFW Hindu Temple between 10 AM till 4 PM. So while we are talking about DFW Hindu Temple, Abhishek ji, I know you also have an event that is coming up and you would like to discuss about that.
2: Yes, very much. Namaste, all the listeners. So very excited to be here.
0: Ji, sir.
2: So the event is something that you all wait very, very curiously and impatiently. So I'm happy to announce that we are doing the Bhagavat Puran Katha. And this Katha is going to be done by, as some of you may already know, Acharya Sri Madhul Krishna Goswami Ji Maharaj, who comes from the holy land of Vrindavan itself. And so many of us know that Madhul Krishna Shastri Ji, Goswami Ji, is such a renowned devotional singer and स्पिरिचुअल ओरेटर कथावाचक हैं, बहुत अच्छे एंड प्रमुख सेवा अधिकारी हैं वो तो श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के. तो उनकी तो आई मीन आई कैन जस्ट गो ऑन टू टॉक अबाउट हिम, बट आई विल टेक अ पॉज. आप क्वेश्चंस बताइए, फिर एनी क्वेश्चंस यू हैव अबाउट द कथा.
0: सो इफ यू कैन शेयर द डेट्स आल्सो, ऑफ कोर्स वी नो इट इज हैपनिंग एट डीएफडब्ल्यू हिंदू टेंपल, बट इफ इट इज अ भागवत सप्ताह, आई एम अज्यूमिंग इट वुड बी फॉर एन एंटायर वीक. सो अगर आप डेट्स बता सके एंड आल्सो द टाइमिंग्स प्लीज.
2: यस डेफिनेटली. So it's starting on June 28th.
0: Okay.
2: So in another couple of weeks time, Sunday se start hoga, it'll go on till Saturday. And Kalash Yatra se start karenge at about 3 PM and then the Katha continues till about 7 PM.
0: Okay.
2: And the rest of the weekdays, which is Monday through Friday, the Katha will be in the evening. So 6:30 to 9 PM.
0: 6:30 to 9.
2: Right.
0: Absolutely.
2: And the last day on the Saturday will be at 1 PM. And each of these days, we serve Mahaprasad, so as our listeners and devotees come.
0: Ji.
2: So on the weekdays, Mahaprasad is before the Katha, and on the weekends, after the Katha.
0: After the Katha. So once again, it's starting on 28th of June, which is Saturday, 2 weeks from now. एंड 28 टिल 4th ऑफ जुलाई, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं और इस भगवत गीता का लाभ अवश्य उठाइए, क्योंकि जैसे कि आपने सुना, बांके बिहारी के मुख्य सेवक यहाँ पर पधार रहे हैं आप ही के लिए, उनके कथामृत को, वचनामृत को सुनने भूलना नहीं. एंड वंस अगेन, यू कैन लॉग ऑन टू dfwhindutemple.org फॉर ऑल द इवेंट्स विच इज़ भगवत गीता परीक्षा एज वेल एज फॉर द अपकमिंग भगवत सप्ताह. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन एयर और ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी कम्युनिटी को देने के लिए. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी एंड मेनी मेनी बेस्ट विशेस फॉर बोथ द इवेंट सर.
2: थैंक यू वेरी मच निलम बेन. मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल वाला एक
0: बिल्कुल बिल्कुल आई विल प्ले दैट सर, क्योंकि आपने कहा कि बांके बिहारी के मंदिर के जब आ रहे हैं पुजारी जी और हमारे लिए इतनी अच्छी कथा यहाँ करने वाले हैं, तो बिल्कुल हमें ये सुननी तो बात बनती ही है. अभिषेक जी आपने कहा और हमने बिल्कुल आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे यहाँ पे ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. थैंक यू सो मच. अभी के लिए कार्यक्रम हर शनिवार की दोपहर.

कुछ रोशनी की बातें, कुछ उम्मीदों की बातें, यहाँ पर मैं नीलम तवे करती हूँ आपके साथ हर शनिवार की दोपहर 2 to 3 PM ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। 21st of June इज ऑल्सो अ वर्ल्ड म्यूजिक डे अलॉन्ग विद बिंग फादर्स डे। तो अगर आप इस दिन में हिस्सा लेना चाहते हैं, यू कैन लॉग ऑन टू vanesha.net, जहाँ पर आपके पसंदीदा गाने आप बता सकते हैं कि कौन से गाने आपको बहुत पसंद है किसी भी कैटेगरी के, एंड यू मे बी वन ऑफ द लकीस्ट विनर्स। वंस अगेन दैट इज vanesha.net। और उसी के साथ फन पिज़्ज़ा किचन की आपको याद दिला तो जी हाँ, दो दो लोकेशन है उनके, फ्रिस्को एंड ऑल्सो इन कॉलोनी। आप चाहे वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, आपके स्वाद के अनुसार बढ़िया आचार के साथ पिज़्ज़ा खा सकते हैं आप फन पिज़्ज़ा किचन में, दैट इज़ फ्रिस्को एंड कॉलोनी।

104.9 FM फनीशा रेडियो, मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ हर शनिवार की दोपहर विद दिस प्रेजेंटेशन जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप एंड इट इज़ ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी टू सपोर्ट एंड हेल्प ऑल द नॉन प्रॉफिट्स ड्यूरिंग दिस आवर. Once again, you can follow our Phanesia's community outreach page on Facebook and Instagram as well, जहाँ पर हर हफ्ते बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी एंड ऑल द इवेंट्स विच आर हैपनिंग अराउंड द टाउन. वी ऑल्सो पब्लिश देयर पिक्चर्स, सो प्लीज सेंड अस ऑल योर इवेंट्स कम्युनिटी कैलेंडर. वी कैन पब्लिश ऑन अवर सोशल मीडिया, दैट इज Phanesia's कम्युनिटी आउटरीच पेज, दैट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री. एंड ऑल्सो ऑल योर इवेंट पिक्चर्स वी विल ऑल्सो पब्लिश इट ऑन अवर Phanesia's कम्युनिटी आउटरीच पेज. And we also have a YouTube channel, Phanesia's Community Outreach channel YouTube. You can search it on YouTube, which says Neelam Dave Phanesia Community Outreach. And I have tried my best, जहाँ मुझे मौके मिलते हैं किसी भी inspiring leaders, चाहे वो political leaders हो, spiritual leaders हो, even celebrities in any area where we can have some inspiring conversations with them, some motivational conversations with them, we do try to capture those. और वो सारी बातें आप सुन सकते हैं on our YouTube channel, which is Phanesia's Community Outreach Page and YouTube Channel. एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी के कॉल्स के लिए, आप सभी के सहकार के लिए, क्योंकि आप ही से बनता है ये कार्यक्रम हर शनिवार ऑन 104.9 FM.

0: बनाना चिकन बनाना
1: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
2: दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट सैल्स नैशविल हॉट चिकन दे डोंट जस्ट मेक इट अनफॉरगेटेबल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स बोल्ड फ्लेवर्स जंबो चिकन टेंडर्स नैशविल सैंडविचेस दैट एक्चुअली हिट लोकेटेड इन प्लेनो एंड रिचर्डसन सैल्स नैशविल हॉट चिकन वी फिक्स हैंग्री
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
8: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
9: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
8: सच में सब संभालेंगे
9: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner. Mix.

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: क्या बात है. वेलकम डैलस, आई होप यू आर हैविंग अ ब्यूटिफुल सैटरडे आफ्टरनून विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड लव वंस. 92 डिग्रीज आउटसाइड, एकदम कातिल वाली गर्मी चालू हो चुकी है. मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड लेडीज एंड जेंटलमैन. ये आवाज अगर जानी पहचानी लग रही है तो यस, दिस इज आरजे प्रेम. वी यूजुअली डू दिस शो एवरी संडेज फ्रॉम 8 to 10, बट टुडे आई एम जस्ट डूइंग अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हु कुडंट मेक इट. So let us know your jam and we will play here on the airwaves of Funasia. 972-235-5555. Studio ka number hai 972-235-5555. And of course, hamara social media pe bhi DMs are open. Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. DMs are open. You can let us know your jam and we will give you a shout out here.
1: थारी किस्मत में गुलाम लिखे हुए रानी गुलाम में नहीं राजा ने मिला करे.

टेक इट, क्या बात है यार। संजू राठौड़ ने तो एकदम धूम मचा दी यार। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह ये गाना वायरल हो चुका है। सारे इन्फ्लुएंसर ठुमका लगाते रहते हैं इस गाने पे। शेकी सॉन्ग फ्रॉम संजू राठौड़। नेक्स्ट गाना हमें रेकमेंड किया है सागर ने। सागर ने बोला धुरंधर वन का गाना बजाया जाए। आई एम लाइक व्हाई नॉट यार। धुरंधर के तो हर एक गाने, आई लव इट यार। नॉट जस्ट द सेकंड पार्ट बट द फर्स्ट पार्ट, आई कैन लिसन टू देम एट एनी टाइम in the day or night. Here's the song, Ishq Jala Kar.

Such an iconic song from an iconic movie. Ladies and gentlemen, before we head towards our next song, I do want to mention about Dream Home Mortgage. They have been helping families achieve home ownership since 1998. Licensed in all 50 states, their expert team delivers stress-free, tailored mortgage solutions. Make your dream home a reality with Dream Home Mortgage. For details, call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com. नेक्स्ट गाना हमें रेकमेंड किया है आतिश ने. उन्होंने बोला है, ओ मेरी लैला बजाइए लैला मजनू का. मूवी तो मैंने नहीं देखी है पर ये गाना कम से कम 200 बार सुन लिया है. इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड एज लैला मजनू. आतिश, हियर्स योर सॉन्ग.

0: sung by none other than Mr. Sonu Nigam, the iconic person behind so many amazing memories. Ladies and gentlemen, we are heading towards a short commercial break, but kahin jayega nahi kyunki aapka aur mera saath rahega theek 5:30 baje tak.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suna, mera wo wala set kahan hai?
9: Kaun sa?
8: Arre, wo goal wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
9: अरे सारे तो सेम है.
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
9: ओ हाँ, ये तो अलग है.
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
16: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
15: कहाँ?
17: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश

0: सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
4: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: super hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you're having a beautiful Saturday evening with your friends, family and loved ones. This is RJ Prem. वैसे हमारा शो होता है हर संडे 8 से लेकर 10 बजे तक, बट आज हमने सब्स्टिट्यूट किया है हमारे रेगुलर RJ के लिए. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. अगेन 9722355555. आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 5:30 बजे तक. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे रिक्वेस्ट आई ये शो ये before the ads, and of course हमें संतोष ने recommend किया एक नेपाली song sung by संतोष. तो संतोष ने recommend किया है संतोष का गाना, it's called चमक चमक. मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ladies and gentlemen, I hope you like it as much as I will.

What an interesting song. Thank you, Santosh, for recommending a song sung by Santosh Sunar. Chamak Chamak. बड़ा मजा आया यार, थोड़ा सा डिफरेंट सुनने का भी कभी कभी मन करता है. सो आई एम ग्लैड दैट वी आर एबल टू डू दिस. नेक्स्ट गाना हमें रेकमेंड किया है संजना ने फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड एज अंजना. अंजना, व्हाई डिड आई से अंजना? ओ बिकॉज आई सेड संजना, सॉरी. अंजना एंड अंजानी करके मूवी थी प्रियंका एंड रणबीर के. सो आई फील गुड करके एक गाना है. हैव अ लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ रियली गुड सॉन्ग.

मैं सही में बोलूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू रिमेम्बर द वीडियो ऑफ दिस सॉन्ग, इट्स कम्प्लीटली शॉट इन द सिटी ऑफ लास वेगास. ठीक है, मैंने जब ये मूवी देखी थी तभी मुझे बहुत इच्छा हुई थी यार, कभी एक दिन जाऊँगा यार वेगास घूमने. एंड ऑफकोर्स उसके पहले हमने परदेस में देखी थी, वेन वी वर किड्स, शाहरुख खान वॉक्स ऑन द स्ट्रिप यू नो एंड ही गोज टू द ओल्ड वेगास, ये दिल दीवाना, उसमें स्ट्राटोस्फियर दिखाया है, सब कुछ दिखाया है, राइट. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, वेगस हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल, क्योंकि मैं तो गया था ऑलमोस्ट 2015 या 16 में, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स नाउ. मैं जब पहली बार, मुझे लगा था एकदम ब्रांड न्यू होगा सब कुछ, इट वोंट बी लाइक हाउ आई सॉ इन द फिल्म्स, बट इट इज एग्जैक्टली द सेम, इट डिडंट चेंज एट ऑल. उसके बाद मैं 5 साल बाद वापस गया, फिर भी वैसे का वैसा ही है वेगस. सो आई नो पीपल लव वेगस, बट आई थिंक 2-3 बार जाने के बाद इट्स लाइक इट्स द सेम यार, इट्स नथिंग न्यू. बट ऑफ कोर्स सम पीपल जस्ट लव गैम्बलिंग, आई एम नॉट वन ऑफ दोज. सो या, पीपल हैव डिफरेंट रीजंस टू गो टू लास वेगस. लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप हिम कमिंग. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. हमारा यूजुअल शो होता है संडे को 8 से लेकर 10 बजे तक, बट आज थोड़ा सा स्केड्यूल में ट्विस्ट है, तो इसलिए आई हैव द ऑपर्चुनिटी टू हैव फन During Saturday afternoons. Let us know your jam. 972-235-5555. Make sure you tune in और number program कर लो 972-235-5555, क्योंकि एक amazing giveaway आ रहा है. All the Bollywood freaks out there, जिसको Bollywood quiz खेलने में मजा आता है, make sure you के ये dial change ना करो.

वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी को कि हम एक जबरदस्त बॉलीवुड क्विज खेलेंगे और ये बहुत ही इजी रहेगा यार। आई टेल यू फर्स्ट क्विकली ये किन की तरफ से है। बिकॉज ऑफ आर अमेजिंग ग्रैंड स्पॉन्सर की वजह से हम ये सब कर पाते हैं हमारे लिसनर्स के लिए। तो हमारे इस हफ्ते के ग्रैंड स्पॉन्सर है द फ्लेवर लाउंज। इफ यू हैवन बीन टू दिस अमेजिंग रेस्टोरेंट इट्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर बिकॉज हूएवर आंसर्स दिस क्वेश्चन fastest, right? Correct answer, by the way. जो फटाफट से मुझे सही जवाब देगा उसे मिलेगा मौका या तो फिर दाल मखनी जीतने का, अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन है तो आप दाल मखनी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। तो मैं एक गाना बजाने वाला हूँ, आपको सिर्फ मेरे को दो चीज बोलनी है, ये गाना किस मूवी का है और ये गाना किसके ऊपर पिक्चराइज है, हीरो और हीरोइन कौन, मूवी का नाम क्या है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हियर वी गो 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर। 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर। ये गाना जो मैं बजाने वाला हूँ ये किस मूवी का है और इसके हीरो हीरोइन कौन है।

थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. यार मैंने बहुत कोशिश की सभी से बात करने की जिन लोगों ने फोन किया. ऑलमोस्ट 15 कॉल्स इन 30 सेकेंड्स एंड आई ट्राई टू कॉल बैक एज वेल, बट या देयर इज ऑलवेज गोना बी जस्ट वन विनर. तो हमारे भारत जी ने हमको सबसे पहले फटाफट कॉल करके जवाब दे दिए और उन्होंने तो पूरी पिक्चर की कहानी भी बोल दी यार. उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें जवाब क्या, मैं तो पूरी पूरी कहानी बता दूंगा मूवी की. सो या ऑफ कोर्स दिस जस्ट गोना बी वन विनर एवरी वीक, बट नाराज मत होइए, हताश मत होइए, बिकॉज वी डू दिस एवरी सिंगल वीक, राइट? इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ आर अमेजिंग स्पॉन्सरर्स ऑन आर रेडियो. सो दिस वीक इट वॉज फ्लेवर लाउंज एंड ऑफ कोर्स वी हैव अदर स्पॉन्सरर्स एज वेल. बिकॉज ऑफ देम वी आर एबल टू प्ले दिस गेम, प्ले द बॉलीवुड क्विज विद ऑल आर अमेजिंग लिसनर्स. लेट अस नो योर जैम 972-235-5555. नेक्स्ट गाना हमें रेकमेंड किया है अनीता ने. अनीता जी, योर सॉन्ग ओफ टू स्टेट्स का गाना है ये.

0: All right, ladies and gentlemen, I want to talk about Vishal and Shekhar. Dear Dallas Bollywood fans, your playlist is about to come alive. Vishal and Shekhar, the duo behind some of the finest Bollywood songs, the super hit songs, are bringing the super hit tour to Dallas on Sunday, July 12th at the Curtis Culver Center Garland. Tickets are on sale at cashpatelproductions.com. Here we go. इस गाने के बाद हम जा रहे हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं क्योंकि हमारे अमेजिंग आरजेज आर कमिंग टू इंश्योर दैट द मोमेंटम कीप्स अप रनिंग।
1: यहाँ पे सभी नंगे हैं, देखना। कम ऑन एना।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
9: अरे वो केक आया क्या?
10: डीजे कौन हैंडल करेगा?
9: डिकॉर्ड वाले को कॉल किया?
10: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
9: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया?
10: ऑसम इवेंट्स?
9: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
11: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
9: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
12: कॉल नाउ एट 214-725-7466. That's 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
15: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
17: इन प्लेनो।
16: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
18: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए,

0: 870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए स्लो प्रोसेस, ऑप्शन बी ज्यादा पेपर वर्क, ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर का कंसर्न, या ऑप्शन डी लोन डिक्लाइन होने का डर।
3: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
2: कंप्यूटर जी SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
4: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
5: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
7: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

योगासनम एशो आमार गाड़ीते बोशो बोशो बोशो बोशो बोशो बोशो ना एशो आमार गाड़ीते बोशो बोशो बोशो बोशो बोशो बोशो आओ मारी गाड़ी मां बेसी जाओ आओ मारी गाड़ी मां आओ मारा गाड़ी मां बेसी जाओ। Welcome back, ladies and gentlemen. Last song of our segment. उसके बाद हम कहेंगे आपको bye bye, tata, अलविदा, see you next weekend. Last गाना जो हमारा हमेशा special गाना रहता है, निलेश भाई ने हमें recommend किया है तू है वही दिल ने जिसे. So DJ अकील का मैं remix वाला version बजाऊंगा ये गाना. It's an iconic song from the iconic times of early 2000s. Have a listen, ladies and gentlemen.

जी हाँ, हाय गर्मी, माय गॉड क्या गर्मी पड़ रही है। आई वॉज ड्राइविंग एयर एंड इट शोड 95 इन माई कार। आई वॉज लाइक माई गुडनेस, जस्ट केम फ्रॉम एल ए, सो थोड़ा और ज़्यादा हिट करती है। वेल इन एल ए द टेम्परेचर्स वेर इन मिड 80s एंड 95 विद ह्यूमिडिटी, इट रियली गेट्स यू इन ए हरी। चलिए कोई नहीं, दिस इज़ योर होस्ट आर जे सोमिल और रहूँगा मैं आपके साथ आज रात, करूँगा आपका मनोरंजन रात के 9 बजे तक, चाहे गर्मी हो या सर्दी। जी हाँ, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, बट कोई नहीं, वील प्ले सम कूल सॉन्ग्स फॉर यू एंड वील कूल यू डाउन। इन फैक्ट यू नो व्हाट, आई हैव अ थीम फॉर द फर्स्ट सेगमेंट और देखते हैं ये सेगमेंट कहाँ तक चलता है। वेल अगर आप इमेजिन कर सकते हो, आप गेस कर सकते हो कौन सा सेगमेंट है, आई एम गोइंग टू प्ले सॉन्ग्स दैट आर पिक्चराइज्ड ऑन वन पर्टिकुलर लोकेशन एंड वेरी पॉपुलर लोकेशन इन द समर टाइम ऑफ कोर्स। एंड अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे कॉल करके बताइएगा। इनफैक्ट 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। इतनी गर्मी, पीपल एस्केप फ्रॉम दिस हीट टू सच प्लेसेस एंड दैट वुड बी द थीम फॉर द फर्स्ट सेगमेंट। एंड जितने गाने आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट थीम, पहले तो आप गेस कीजिए थीम क्या होगा, और अगर गेस कर सके तो उस थीम पे ही हम गाने बजाएंगे। और आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अप अ फ्यू सॉन्ग्स, बट आई वुड लव टू गेट योर मेमोरीज एंड योर सॉन्ग्स। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज़ कमिंग अप एंड अगर हर सॉन्ग के साथ कोई मेमोरी अटैच हो तो क्या बात है, राइट? होनी ही चाहिए। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और हिंट देता हूँ, बड़ा बड़ा बिग बिग ड्रॉपिंग ए बिग हिंट फॉर द थीम ऑफ दिस सेगमेंट। दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल और रहूँगा आपके साथ, जैसा मैंने बताया आपको, रात के 9 बजे तक।

ना तेरा मेरा चटकारे वाला बीच बीच में बदलेगा, ये स्टेटस कवारे वाला बीच बीच में। दैट वाज अ ह्यूज हिंट फॉर द थीम ऑफ दिस सेगमेंट। अगर आपके जहन में कोई आप इफ यू वांट गेस व्हाट द थीम इज, भाविनी ऑलरेडी कॉल्ड एंड गेस्ट एंड शी वाज वेरी क्लोज इन द बॉल पार्क बट नॉट एग्जैक्टली नेल्ड इट, बट कोई नहीं। चलिए 9723555555 है स्टूडियो का नंबर। और मैं आपको और एक हिंट देता हूँ और एक सॉन्ग बताता हूँ। एंड समर में जब गर्मी बहुत होती है तो पीपल एस्केप टू places like these ones and that is the theme for today evening, early evening. And bataiye aap mujhe aapke paas kaun si memory judi hai is theme ke sath. Is gaane ke baad main batata hu theme kya hoga. Aap itne mein aap guess kijiye ki theme kya hai. Bahut difficult nahi hai, main do char abhi maine aapko spell bhi karke bata diya yaar, abhi isse zyada main kya bataun, right? To 9723555555 hai studio ka number. मैं हूँ आरजे सौमिल और रहूँगा आपके साथ 9 बजे तक। 6 बजे से हम शुरू करेंगे माय सिग्नेचर शो कॉल्ड चीले सरा। इन द मीन टाइम आज दिन है सनी सनी।

जी हाँ, आज दिन भी है सानी सानी सानी। एंड नाजिया जी का कॉल आया था, उन्होंने भी गेस किया हम इतनी गर्मी में कहाँ जाते हैं। हम वी एस्केप द हीट बाय गोइंग टू द माउंटेन्स, टू गोइंग टू द कोल्डर प्लेसेस एंड कूलर प्लेसेस एंड हिल स्टेशंस एंड स्टफ। एंड यस, इन फैक्ट सही, वेल लाइक आई सेड, इट्स इन द रेंज। एंड मैंने उनको बताया कि आप गेस तो कीजिए, आप थीम गेस कीजिए, मैं थीम बदल दूंगा आपके लिए। वेल द थीम इज बीच, नॉट रिवर्स, नॉट पूल्स, नॉट लेक्स, बीच, समुंदर किनारे या फिर सी साइड और ओशन साइड, दैट इज़ द थीम फॉर टुडे इवनिंग्स सेगमेंट। इतनी गर्मी है, चलो चलते हैं बीच की ओर और लेके चलता हूँ आपको बीच की ओर। उससे पहले बताता हूँ मैं, वेल कंग्रेचुलेशंस टू इलॉन मस्क, द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूली मिंटेड ट्रिलियनर। कैन यू बिलीव दैट, ट्रिलियनर, ट्रिलियनर, and yes, trillionaire, with the launch of SpaceX, launched at 130, hit 150, closed on 160, I think, 135 to 160 it closed on, and that event minted the first trillionaire of recorded history that we know of. And well, I personally believe that trillionaire ho ya billionaire, the world needs more people who make six figures and multiple six figures. The world will be better off when the middle class grows and expands and thrives and flourishes. And all this does, if we mint more billionaires and trillionaires, all it will do is it will silo the money in one corner. Well, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको माई टाइम इक्विटी के बारे में। अगर आपको फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए तो पहुँच जाइए माई टाइम इक्विटी के पास, विच इज़ लेड बाई सी पी एस सुधीर पाई, जो ऑफर करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, एंड दे डू रियली इन्फॉर्मेटिव वेबिनार्स एवरी वीक। तो आप उनकी वेबसाइट पहुँच जाइए माई टाइम इक्विटी डॉट कॉम, वहाँ पर साइन अप कीजिए उनके वेबिनार। इनफैक्ट द वेबिनार ऑफ दिस वीक वॉज rightfully titled From Crypto to Grid, and with the AI data centers, AI evolution and the data centers that are happening everywhere, and there is mixed feelings about it. And agar aap confused ho is bare mein, and if you need some financial guidance, mytimeequity.com is the place to go, and you can call his office at 469-702-1272, 469-702-1272. This is your host RJ Somil, aur maine bata diya aapko aaj ka theme, इस सेगमेंट का थीम है बीच। सो मुझे आप बताइए, मेरे पास तो काफ़ी गाने हैं बीच के, बट बस इतनी शर्त है कि आप रिक्वेस्ट करो सॉन्ग, और वो सॉन्ग ज़्यादा सागर किनारे, द सॉन्ग शुड हैव अ बीट दैट विल मूव आवर फीट, एज लॉन्ग एज द सॉन्ग हैज़ द बीट एंड इट इज पिक्चराइज्ड ऑन द ओशन, नियर द ओशन, सी शोर, या फिर गाने में जिक्र होता हो समुद्र किनारे का, इट्स अ फेयर गेम, एब्सोल्युटली फेयर गेम। द सॉन्ग शुड हैव अ बीट दैट विल मूव आवर फीट।

जी हाँ, एक पल का वादा झूठा ही सही, टेकन फ्रॉम तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, कार्तिक आर्यन और अनन्य पांडे को देखा था। वेल आई बिलीव जैसा एआई स्लॉप होता है ना, जैसा एआई स्लॉप में यार बहुत लोग एआई को यूज़ करते हैं एंड अब्यूज करते हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज इट राइट एंड दे आर फिगरिंग थिंग्स आउट एंड दे आर मेकिंग एआई स्लॉप। जैसे एआई स्लॉप होता है वैसे आई फिगर्ड आउट ए न्यू फ्रेज कॉल्ड केजो स्लॉप, करण जौहर स्लॉप। यार कभी कभी स्टोरीज नहीं होती है मूवी में, कुछ होता नहीं है एंड ही जस्ट प्रोड्यूसर्स अ मूवी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आई गेस। दिस वॉज वन सच मूवी, तू मेरा मैं तेरी, नहीं स्टोरी नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं यार। इनफैक्ट मैंने सुना भी था इस मूवी के बारे में कि कार्तिक आर्यन रिटर्न्ड अ पोर्शन ऑफ हिज फीस दैट ही हैड चार्ज्ड फॉर दिस मूवी बिकॉज द मूवी डिडंट डू दैट वेल एंड सो दैट इज़ माई टेक ऑन ए आई स्लॉप एंड केजो स्लॉप। चले कोई नहीं, बहुत सारे कॉल्स आने शुरू हो गए और क्या बताऊँ यार, इतनी गर्मी पड़ रही है और लोग नहलाने में पड़े हैं, नहाने में और नहलाने में पड़े हैं। दो तीन कॉल आ गए मुझे इस रिक्वेस्ट पे कि आज का थीम जो है वो समुंदर है, राइट, समुंदर बीच ओशन एंड सी साइड एंड सभी को नहलाने की पड़ी है यार। चलिए लेके चलता हूँ आपको 1983 पुकार का गाने की ओर एंड दिस सॉन्ग इज एन एवरग्रीन सॉन्ग, एब्सोल्युटली अमेजिंग बीट एंड माय गुडनेस द साइरन सिजलिंग हॉट जिनतमान।

जी हाँ, जूली से मुझे याद आया, आप लोग अपना सॉन्ग और इवेंट और ब्यूटीफुल मेमोरी याद रखिए. और व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, दिस विल टेक अस टू द ब्रेक. व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आई वांट टू रिसीव योर कॉल्स, योर सॉन्ग्स, योर मेमोरीज दैट आर रिलेटेड टू बीच. एंड तब तक चलिए लेके चलता हूँ आपको जूली की वर्ल्ड पे, और थोड़ा बहुत नहा लेते हैं.

0: गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान. एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
1: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
2: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

वेलकम वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल और यू ट्यून इनटू जी ले जरा विद आरजे सोमिल। रहूंगा आपके साथ मैं 9 बजे तक, द सिग्नेचर शो दैट कम्स ऑन एयर सैटरडे नाइट, गेट यू रेडी फॉर द पार्टी। एंड इसीलिए यार शो का नाम हमने रखा है जी ले जरा, क्योंकि यार रोजमर्रा की जिंदगी में आपको और हमको धुएं धोखे धक्के तो मिलते रहते हैं और इसी में आपकी और हमारी जिंदगी कट भी जाती है। पर अगर आपको काटनी नहीं है जिंदगी, अगर आपको जीनी है जिंदगी, तो सही स्टेशन पे सही टाइम पे ट्यून इन हुए हो, इसीलिए हमने शो का नाम रखा है जीरे सरा। तो क्यों ना आप और हम इस खूबसूरत सी जिंदगी से दो पल चुरा ले, क्यों ना आप और हम इस शाम को और थोड़ी रंगीन और थोड़ी नमकीन बना दे, एंड क्यों ना आप और हम जी ले जरा।

कहता है दिल जीले जरा आ पास आ जीले जरा। जी हाँ, रेडियो का वॉल्यूम लाउड और मेक श्योर यू आर, इफ यू आर ड्राइविंग यू फोकस ऑन ड्राइविंग। मुझे अक्सर बताया गया जाता है, अक्सर नहीं कई बार मुझे बताया गया है कि मेरे दोस्त जो सुन रहे थे मुझे रेडियो पे, जैसे ही शो शुरू हुआ देन दे चेक द रफ्तार और रफ्तार थोड़ी बढ़ गई थी। सो मेक श्योर यू आर ड्राइविंग सेफ, कीप योर आइज एंड अटेंशन ऑन द रोड एंड कीप द एंटरटेनमेंट फोकस राइट हियर। दिस इज योर होस्ट आरजे सौमिल। चलिए आज के शो का थीम, दिस सेगमेंट का थीम, जैसे मैंने बताया बहुत ही गर्मी पड़ रही है, 90s हाई, मिड टू हाई 90s चल रहा है टेम्परेचर। एंड तो हमने थीम रखा है इस सेगमेंट का बीच, एनीथिंग दैट इज गॉट अ बीच, नॉट रिवर्स, नॉट पूल, नॉट पूल पार्टीज एंड स्टफ, बीच, सिंपली बीच, चाहे वो ओशन हो चाहे वो सी। But you can call and request a song that is pictured on the beach or has a mention of the beach, and the बस कंडीशन इतनी है कि सॉन्ग में होने चाहिए बीट दैट कैन मूव आवर फीट। वो जो सागर किनारे जो सॉन्ग है ना, बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग है, बट दैट डजंट फिट द ओकेजन टू नाइट। पार्टी नाइट है, सैटरडे नाइट है, तो बनता ही है। जस्ट गिव मी अ कॉल, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। बहुत सारी रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है और आपकी अगर कोई मेमोरी बीच से जुड़ी हो जरूर कॉल कीजिए, 9722355555।

जी हाँ, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। एंड यार, यू नो, मैंने आज ब्लू है सनी सनी पानी पानी बजा दिया, पर फिर से लगाता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट आ रही है उसकी। कोई नहीं, चले। और सौम्या का क्या मैसेज था, क्या कॉल था, माई गुडनेस, शी सिंग्स सो वेल। शी वॉन्टेड ए समुंदर सॉन्ग, सात समुंदर सॉन्ग, एंड आई सेड चलो यार मैं लगाता हूँ दिव्या भारती का सॉन्ग सात समुंदर। शी सेड नहीं, वो सात समुंदर नहीं, दूसरा आएगा। एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग सो ब्यूटीफुली। मैंने सोचा यार मैं क्यों बजाऊँ ये सॉन्ग, आप ही इतना अच्छा गा रहे हो, आप ही आ जाओ एयर पे, तो मैं वो गाना भी ढूंढ के लगाता हूँ। इन द मीन टाइम आई वॉन्ट टू हियर अबाउट अ फेवरेट मेमरी दैट यू गाइज हैव ऑन द बीच, और मैं शेयर करूँगा अपनी मेमरी भी, आप बताइए अपनी मेमरी। चलिए लेके चलता हूँ आपको बेशरम रंग की ओर।

जी हाँ, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी पठान. इन फैक्ट YRF's एंट्री इनटू द स्पाइवर्स, रोहित शेट्टी ओन्स द कॉपवर्स. YRF यशराज फिल्म्स इज ट्राइंग टू ब्रेक ग्राउंड्स इन स्पाइवर्स एरा. वेल दे हैव टाइगर, दे हैव then war, and then they have Pathan now. So they are trying to get into this, and they have made some really good headways into the spy world. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की, और उससे पहले बताता हूँ ड्रीम होम मॉर्गेज के बारे में, जिनका शो होता है एवरी सैटरडे बिटवीन 3 and 3:30. हुसैन पंजवानी आते हैं और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो उस सेगमेंट में. ड्रीम होम मॉर्गेज हैज़ बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998. जी हाँ, ये लाइसेंस्ड है सारे स्टेट्स में, ऑल 50 स्टेट्स, एंड देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर्स स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सोल्यूशन. स्ट्रेस फ्री इसलिए क्योंकि यार कहीं ना कहीं हर मॉर्गेज एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ अड़चन तो आती है, और आई मीन द इंडस्ट्री, सो आई नो, एंड दे डिलीवर स्ट्रेस फ्री एंड टेलर्ड मॉर्गेज सोल्यूशन. टेलर्ड इसलिए कोई WTP है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी की गिग इनकम है, किसी का अभी ले ऑफ हुआ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, दे हैव टेलर्ड मॉर्गेज सोल्यूशन फॉर यू. मेक योर ड्रीम होम ए रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज. फॉर डिटेल्स कॉल 972-245-5626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com. जैसा मैंने बताया आपको कि सौम्या की रिक्वेस्ट पे लेके चलता हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत गाना उन्होंने ढूंढ के निकाला, और सात समुंदर. एंड सात समुंदर तो ऑल वी नो इज दिव्या भारती एंड सनी डियोल, सात समुंदर पर, एंड ऑफ कोर्स द रीसेंट वन दैट केम आउट विद कार्तिक आर्यन, एंड वो सात समुंदर. बट देन शी सेड नो, यू नो व्हाट, उन्होंने शी डीप डाइव्ड एंड फाउंड अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग विद सात समुंदर. हियर कम्स सजना वे सजना, एंड विकी विद्या का वो वाला वीडियो से लिया है ये गाना हमने आपके लिए. थैंक यू सौम्या फॉर रिक्वेस्टिंग दैट सॉन्ग. अगर आपके जहन में कोई अच्छी सी मेमोरी जुड़ी हो बीच के रिलेटेड, कॉल कीजिए 972-235-5555. एंड चाहे वो हो डेस्टिनेशन वेडिंग पे आप गए हो, या फिर वेकेशन पे गए हो, या फिर स्कूल कॉलेज दिनों में जब गए हो कहीं पे, 972-235-5555.

जी हाँ, दैट वॉज टेकन फ्रॉम विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, देखा है आपने? नहीं नहीं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी ऑफ कोर्स एंड चलिए कोई नहीं, आपने देखा नहीं हो तो चेकआउट दैट्स लवली सॉन्ग सोमिया, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिक्वेस्ट। चलिए अब मुझे बताइए आपके जहन में कोई अच्छी सी मेमोरी, इनफैक्ट वन वी कम बैक फ्रॉम दिस सॉन्ग आई विल टेल यू अबाउट द मेमोरी दैट आई हैड व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर TCS, आई वाज इन बॉम्बे लिविंग इन बोरीवली वर्किंग इन एयर इंडिया बिल्डिंग इन नरीमन पॉइंट एंड ऑल ऑफ अस टुक अ ट्रिप टू गोवा आफ्टर अ फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल, बताता हूँ उसके बारे में, बहुत ही स्वीट मेमोरी है उससे साथ, उसके साथ वी वेंट टू डिस्को, वी वर क्लबिंग इन गोवा एंड देर वॉज वन सॉन्ग दैट वॉज रिपिंग अप द चार्ट्स एट दैट टाइम, आई प्ले दैट सॉन्ग एंड आई शेयर दैट मेमोरी विद यू इन द मीन टाइम। अगर आपके पास कोई अच्छी सी मेमोरी हो बीच से जुड़ी हुई, 9702355555 है स्टूडियो का नंबर, दिस इज योर होस्ट RJ Saumil, यू ट्यून इन टू जीरे जरा विद RJ Saumil।

एब्सोल्युटली अमेजिंग बीट मोनिका सॉन्ग टेकन फ्रॉम कूली। चलिए बताता हूँ मैं अपनी मेमोरी आपको जो हमारी हुई थी। दिस वॉज बैक इन मिड 1990s। आई हैड जस्ट फिनिश माई ग्रेजुएट स्कूल, आई फिनिश्ड इट इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे भी बीच के काफ़ी किस्से हुए थे। और व्हेन आई केम बैक आई वॉज वर्किंग इन TCS, एंड TCS में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला था। सो आई वॉन्टेड टू स्किप ऑल द ट्रेनिंग वगैरह, सब मुझे छोड़ के आई सेड यार ट्रेनिंग वेनिंग होमवर्क मिलेगा ये सब किसको करना है। देन दे सेड देयर इज कल्चरल फेस्टिवल दैट इज हैपनिंग, एंड कल्चरल फेस्टिवल जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको गेट आउट ऑफ जेल पास मिलेगा। तो ऑफकोर्स आई साइंड अप फॉर एवरीथिंग दैट वॉज कल्चरल, एंड पहुँच गए हम वहाँ पे। और पहुँचते वहाँ पे सो वंस वी डिड द परफॉर्मेंस एट द इवेंट और द ग्रुप दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ, दे सेड वी ऑल सेड यू नो व्हाट, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। एंड सेलिब्रेट करने का प्लान बना तो सब ने बोला कि चलो यार एवरीबडी वाज मोस्ट ऑल ऑफ अस वर सिंगल दैट टाइम, सो दे सेड लेट्स ऑल गो टू गोवा। So about 22 people, all boys and girls, got together and made a plan to go and hit Goa. One of our teammates was from Goa, and she knew the local watering holes and the inside beat of she knew the pulse of Goa. And we said, you know what, you are it, you are the guide for us, and we all are coming, and you make this trip memorable. Itni memorable trip thi wo, kya bata main aapko. We went there for almost like 8 days. And we didn't stay in the touristy places. We stayed where the locals stay. We went and eat where the locals eat. We went and partied where the locals partied. And there was one song that was ripping up the charts. And we were hitting the dance floor with the song like it was nobody's business. Kaun sa song? Well, it is a song from No Mercy. जी हाँ, आपको कहीं नहीं जाना है। दिस सॉन्ग विल टेक अस टू द ब्रेक, बट आई रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू शेयरिंग योर इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ बीच। अगर आपके पास इफ़ यू हैव बीन टू बीच और कुछ हो गया या फिर कुछ अच्छी सी मेमोरी जुड़ी हो आपकी बीच के साथ सागर किनारे, एज लॉन्ग एज द सॉन्ग हैज़ अ बीट होनी चाहिए। बट द सागर किनारे जो सॉन्ग है वो बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग है, बट बहुत स्लो सॉन्ग है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सा बीच वाली सॉन्ग और उसके साथ कोई जुड़ी मेमोरी हो, we'll come back from the break and I'll take you on air and share it with the listeners of Phoenicia. Chaliye, in the meantime, let's take you back to mid-90s and relive some of the best moments of yesteryears. This takes me back to Goa, partying with Anthea and the gang.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
3: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
2: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
3: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
3: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
3: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
4: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
5: भूख लगी
6: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
12: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
13: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
14: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: We got

जी आज ब्लू है पानी और दिन भी है सनी, इसीलिए हमने शो का थीम रखा है बीच पे। तो आपके पास अगर कोई अच्छा सा गाना हो बीच पे तो जरूर कॉल कीजिए। 972-3555555 है स्टूडियो का नंबर। यू ट्यून इन टू जीरे जरा विद आरजे सोमिल।

यहाँ फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने बात न मानी। अगर आपकी किस्मत भी फूटी नहीं बट आपकी किस्मत में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, दुर्घटना घटी हो या स्लिप एंड फॉल हो गया हो, तो आप याद रखिए उमर ख्वाजा को। अटर्नी उमर ख्वाजा इज देयर इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन कार ट्रक और स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट। डू रिमेंबर अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड रिप्रेजेंट यू फेयरली एंड गेट यू द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज, यार किसको डील करना है? आपके साथ दुर्घटना घटी उसके बाद आप दूसरी दुर्घटना के पीछे क्यों जा रहे हो? डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल। लेट उमर ख्वाजा एंड हिज टीम handle that and represent you and get you the compensation that you so rightfully deserve because of durghatna that has been ghatied with you. So you don't pay until you win, and you can set up a free consultation call with his office at 469-300-5046, 469-300-5046, or you can visit their office website, which is attorneyomar.com. Ji haan, I am also doing wordplay. Durghatna ghatied, maine bana diya ek word, but agar aapke saath, aapko pata hi hai main kya bol raha hoon, agar aapke saath koi durghatna ghati, to zarur Omar Khwaja ke office zarur call kijiye, 469-300-5046. Chaliye, leke chalta hoon agle gaane ki aur, aur bahut sare acche acche calls aa rahe hain. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ द मेमोरीज दैट यू कैन शेयर, चाहे वो स्कूल दिनों में हो या फिर आप वेडिंग के बाद आप गए हो कहीं पे, हवाई गए हो या फिर गोवा गए हो। अभी मुझे दो तीन कॉल आया कि हम भी बॉम्बे से, हम भी गोवा बहुत गए थे, बट ऑन एयर बोल सकते ऐसा कोई हादसा हम नहीं बता सकते आपको। तो समझ सकता हूँ मैं, बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं। हमारे पास भी काफ़ी हादसे हुए, काफ़ी किस्से हुए। मैंने एक ही हादसा बताया, एक ही किस्सा बताया, बट कोई नहीं। चलिए आप बताइए आपके साथ कोई अच्छी सी मेमोरी जुड़ी हो बीच के साथ। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। अगले गाने की ओर लेके चलता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया था आपको, YRF इज मेकिंग एन एंट्री इन टू द स्पाइवर्स, राइट। लेके चलता हूँ आपको वॉर एरा में, ऋतिक रोशन की वॉर, राइट। ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, एंड ये जो सॉन्ग है घुंघरू सॉन्ग जो बजाऊंगा मैं आपको लिए, दिस सॉन्ग इज़, ये सॉन्ग के कहीं पहलू है, कहीं फ्लेवर्स है, कहीं कई सारे वर्जन्स है। पंकज उदास ने भी इस गाने को गाया है, स्मिता पाटिल के ऊपर भी फिल्माया गया था ये गाना एक बार शशि कपूर के मूवी के साथ। और दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो हियर विद वॉर। लिरिक्स पे थोड़ा गौर फरमाइएगा।

0: मैंने तो घुंघरू ही तोड़ दिया, वाणी कपूर और ऋतिक रोशन, विशाल शेखर के म्यूजिक पे, कुमार के लिरिक्स पे, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में. वेल, विशाल शेखर आर कमिंग टू डैलस. डैलस बॉलीवुड फैंस, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव एंड गेट टोटली लिट. द ड्यूओ विशाल शेखर बिहाइंड सम ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट बॉलीवुड हिट्स आर ब्रिंगिंग देयर सुपर हिट टूर टू डैलस. ये होने वाला है कॉन्सर्ट संडे जुलाई 12th. जी हाँ, तकरीबन एक महीना और है. दिस इज गोइंग टू बी एट कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड. टिकट्स आर ऑन सेल एट द वेबसाइट कैश पटेल प्रोडक्शंस, KASH नॉट CASH, कैश पटेल्स, कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम पर जाइए और अपनी टिकट ले लीजिए टू फॉर द टूर ऑफ विशाल शेखर. द बेस्ट सीट्स आर अवेलेबल राइट नाउ एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑफ कोर्स. कैश पटेल प्रोडक्शंस फॉर टिकट्स ऑन जुलाई 12th संडे फॉर कर्टिस कलवेल सेंटर, विशाल शेखर्स वर्ल्ड टूर. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और टेकिंग यू टू द ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. एंड कई सारे कॉल्स आ रहे हैं, कई सारे किस्से आ रहे हैं. वी टॉकिंग अबाउट बीच. आज हम हैं समुंदर किनारे, चाहे वो बीच वो नॉट नदी किनारे, समुंदर किनारे, बी इट ओशन और सी. एंड अगर उससे जुड़ी कोई खास मेमोरी हो आपकी तो बताइए. आई वॉज ए खिड वन दिस सॉन्ग वॉज प्लेइंग एंड दिस सॉन्ग आई हैड नो आइडिया द डेप्थ ऑफ द मीनिंग ऑफ द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग. जब व्हेन आई केम ऑफ एज तब पता चला ये माय गुडनेस इतना अच्छा सॉन्ग. आई एम ब्रिंगिंग यू द रीमिक्स वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग फ्रॉम द यस्टरडे. से हियर इट कम्स. दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल. यू ट्यून इन टू जी दसरा विद आरजे सोमिल.
1: Uh-huh. Oh yeah. 2012, the place to be.

You know, that was, like I said, a blast from the past. क्या देखते हो जरूरत मैंने, आई थिंक इट वॉज कुर्बानी फिरोज खान, जिनतमान विनोद खन्ना, एम आई राइट? वेल आई वॉज अ यंग किड, आई डिडंट नो द लिरिक्स, लिरिक्स का कुछ समझ में नहीं आया था तब, बट माई गुडनेस जब थोड़ा बहुत होश आया, ये गाना सुना, हिला दिया इस गाने ने. कहाँ देखते हो सूरत तुम्हारी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और कीपिंग द सेम थीम ऑफ द बीच, कीपिंग द सेम टोन एंड टेम्पो गोइंग. अगर आपके पास कोई अच्छा सा बीच का सॉन्ग हो, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. बस शर्त सिर्फ इतनी है कि सॉन्ग में होनी चाहिए बीट जो मूव करे हम सब के फीट.

Absolutely amazing beat taken from the movie तड़प एंड तेरे सिवा जग में. दिस सॉन्ग इज टोटल पैकेज. जैसे आप अगर आपने गाना नहीं देखा हो, ये जरूर देखिए गाना, आपको बहुत मजा आएगा इस गाने में. और बहुत अच्छे अच्छे कॉल आ रहे हैं. इनफैक्ट आई जस्ट गॉट अ न्यू RDB कॉल एंड आई वाज टॉकिंग टू द पर्सन एंड शी वॉज रिक्वेस्टिंग अ सॉन्ग समुंदर में नहा के. एंड मैंने उनको बताया कि यार बहुत लोगों ने नहला दिया आज, इतना नहाया कि यार अगले जुम्मे तक छुट्टी अब मेरी. तो बट शी वॉज रिक्वेस्टिंग समुंदर में नहाकर, बट वो सॉन्ग तो बजा दिया हमने. चलो कोई नहीं, उन्होंने फिर ढूंढ के एक हीरा जैसा सॉन्ग निकाला, वो लगाता हूँ मैं आपके लिए. इन द मीन टाइम लेट्स टेक इट टू पुकेट.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
5: Main expert lifeline use karna chahunga.
4: Computer ji, SBA loan expert se connect kiya jaye.
6: SBA Loan Experts ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
7: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ.
8: चिकन बनाना. चिकन बनाना
9: ब्रो. बनाना नहीं, बनाना. मतलब make the chicken right.
6: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
11: Jis baat ka dar tha wahi hua. Lymphosarcoma of the intestine.
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
13: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई. लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना. एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.
14: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
15: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
14: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM.